की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live pe. पहुंच चुके हैं 8 बजे के उस पार। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ है। सुबह सुबह आवाज आ रही है तो ये जी हाँ ट्यूसडे मॉर्निंग हो चुका है फॉर ऑल दोस पीपल जो अभी भी थोड़ा सा वैसे वाले मोड में है कि नहीं आज मंडे नहीं है, कल छुट्टी थी ना, ना आज ट्यूजडे है। यस दैट इज राइट। चलिए स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ चलते हैं। आई नो यार आईपीएल जो है रैप अप हो चुका है, मैं भी थोड़ा सैड हूँ उसको लेकर, बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ फॉलोइंग इट वेरी वेरी वेल। बट वेल इमेजिन दिस, यू हैव ऑलरेडी वन ऑलमोस्ट एवरीथिंग देयर इज टू विन, ठीक है। यू हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स एंड इंस्पायर्ड मिलियंस एंड सिक्योर्ड आपका प्लेस इन हिस्ट्री, right? And I'm not talking about cricket over here. Most people would probably sit back, enjoy the retirement, right? Serena Williams, ye naam aapne zarur suna hoga, especially mere sare 90s wale dost, matlab ye नाम अगर आप ये वाला स्पोर्ट नहीं भी देखते हैं तो भी आपको ये नाम पता होगा, इट्स सच अ नेम। सो वेल सेरेना विलियम्स 23 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन इज प्रिपेयरिंग फॉर अ रिटर्न टू कॉम्पिटिटिव टेनिस आफ्टर काफी साल जब वो स्पोर्ट से दूर रही फॉर रीजंस ऑफ कोर्स एंड ऑनेस्टली दैट्स व्हाट मेक्स द स्पोर्ट सो एक्साइटिंग। द स्कोर्स आर इम्पोर्टेंट, ट्रॉफीज भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट फैंस रियली लव जो है कहानियां। And a comeback story always grabs a lot of attention, right? Chahe cricket ho, football ho, tennis ho, ya fir koi bhi dusra sport ho. There's something special about seeing a familiar name back in action. A curiosity and excitement and wo jo yaadein hain wo taza ho jaati hain and sab ek saath wapas aa jaate hain. And waise bhi Serena Williams ka naam jo hai tennis ki duniya mein legend ka status rakhta hai. Isiliye ab sports fans ye dekhne ke liye kafi excited hai ki अगर ये कमबैक होता है तो कोर्ट पर उनको क्या देखने को मिलेगा। वन थिंग इज सर्टेन, एज एक्सपीरियंस मदरहुड हैव एडेड न्यू चैप्टर्स टू हर स्टोरी, बट दैट्स व्हाट मेक्स दिस कमबैक इवन मोर इंटरेस्टिंग। नहीं अब देखना ये है कि सेरेना विलियम्स जो है वंस अगेन हेडलाइंस जो है द बिगेस्ट टेनिस कॉन्वर्सेशंस अराउंड द वर्ल्ड और नॉट, वो तो वक्त बताएगा। एंड ऑफकोर्स वी विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड ऑन दैट, बट गुड टू नो राइट, रियली रियली फील्स नाइस। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल आ रहा है मुझे हल्का सुरूर गाना भी कुछ ऐसा कह रहा है।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning!
7: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
8: Well, I think which is kind of being adopted धीरे धीरे करके हर जगह पर, because समय कुछ ऐसा चल रहा है दोस्तों। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल स्टूडियो क्लॉक पर समय हो चुका है 8:16। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मस्ती का मंत्रा चल रहा है अंतरा के साथ। एंड भाई, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा दैट मलेशिया जो है उन्होंने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है एनफोर्सिंग रूल्स दैट स्टॉप चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम क्रिएटिंग सोशल मीडिया accounts on major platforms जैसे Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Idea simple है to protect the young users from harmful content and cyber bullying and online जितने भी risks है उससे. Now platforms जो है are now expected to introduce stronger age verification systems as well. Honestly, this is one of those topics जहाँ पे हर पेरेंट का ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो जाता है। कुछ कहते हैं दैट ऑफ कोर्स फाइनली बच्चे थोड़ा स्क्रीन से दूर रहेंगे, कुछ कहते हैं सोशल मीडिया तो आज की रियलिटी है, कंप्लीटली अवॉइड कैसे कर सकते हैं इसको। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया टुडे इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट्स ऑल्सो वेयर पीपल लर्न थिंग्स, डिस्कवर हॉबीज, स्टे कनेक्टेड एंड समटाइम्स करियर्स भी बिल्ड करते हैं। बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन प्रेशर ये भी उतना ही रियल है। कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग, कंपेरिजन हो रहे हैं, साइबर बुलिंग के कितने केसेस होते हैं, रैंडम कॉन्टेंट आता है, लाइक रियली वियर्ड। कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि why and how, okay? And there are a lot of strangers online as well. It's not that ki pehle nahi the, but things have really, really, one has to be cautious. And ye ek reality hai we all know about. So this news is definitely starting an interesting conversation across the world. Australia already banned kar chuka hai. Singapore mein there are already, kitni baar baat ho chuki hai, there are talks happening. And also in schools, कितने सारे changes जो है वो लाए गए हैं regarding this as well. And मुझे लगता है most of us have had that moment where we opened one reel और फिर पता नहीं चला कि भाई घंटा भर कहाँ चला गया. Technology, yes, it's amazing, but उसके साथ balance का formula भी सीखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. That's what I think. So well. Yes, Radio Busty 24/7 live, but let us all balance it properly. And yeah. The youth must know how to be very, very careful about all of these things. बाकी तो न तुम जानो न हम, गाना कुछ दिख गया तो गुनगुनाने का मन हो गया। पूरा गाना नहीं गाऊंगी, आप भाग जाओगे। इनको अपना काम करने देते हैं। I will be right back. Good morning.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: बाजू
5: ट्रैफिक अपडेट।
6: घड़ी में बज चुके हैं 8:30। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पे गुड मॉर्निंग। ट्रैफिक का अपडेट इस घंटे का, चलिए फटाफट से ले लेते हैं। हेवी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा ऑन CTE टुवर्ड्स AYE बिफोर AMK एवेन्यू 1। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स इटवा सेटअप जुरोंग रोड एग्जिट, और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन CTE टुवर्ड्स AYE एट AMK एवेन्यू 5 एग्जिट। सो वेल, ये था ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। हम एंट्री मारते हैं अगले गाने में, एंड ऑफ कोर्स लेट मी कम बैक एंड टेल यू बड़ा 40, what is this 40 ultra? Let me come back and tell you. सब अभी थोड़ी ना बताऊंगी।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: हाँ जी, मेरे आने से तो दिल में कईयों की घंटी बजती है, लेकिन मेरे कानों में घंटी बजती है जब जब डिस्काउंट की बात आती है. इनफैक्ट मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब किसी को डिस्काउंट के बारे में पता चलता है, डिंग डिंग डिंग डिंग, ओह कहाँ, कब, कैसे. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. 8:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल जो चल रहा है, जॉय लोकल्स वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर में. भाई गहनों की बात हो और उसके साथ आप डिस्काउंट ऐड कर दो, अब इससे बेटर तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता है. दे आर गिविंग दिस इनक्रेडिबल फ्लैट 40% का ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी. Is this for real? Seriously? Wow. So well, ये जो ऑफर है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से हम आपको बताए हुए जा रहे हैं. 14 June तक ये है ऑफर वैलिड. एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन गेट 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज एज वेल विद इजी पेमेंट प्लान्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो लगाना काफी जरूरी होता है. बट डेफिनेटली जब इस तरह की सेल आए और जहां पे आपको बोला जाए कि 40% आपको ऑफ मिल रहा है, स्पेशली on the making charges, which usually is the talking point and the point of concern most of the time, ki nahi yaar is bar rehne dete hain, making charges iske kafi zyada ho jata hai. I think jab mil gaya hai to isko bilkul avail kar liya jaye. So if you are planning, if you have been planning, then this is the right time and this is the right moment with the right jewelry shop, which is Jawalikas, world's favorite jewelers.
2: 40% off, 40% joy Alukas.
3: 40% off? Oh my god, let's go!
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
5: Oh, welcome, Aji. Apna hi garaj hai. Ah, trucka wala geet hai, Aji.

0: पेट्रोल ते पवाए नी।
1: कोई गल नी, साडी गड्डी ते गुडवेल नाल चलदी है।
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature veg and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
5: क्या जी?
6: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com. ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
5: वाजी, क्या बात जी.
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
7: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा.
5: ये पिछले ट्यूसडे की ही बात है जब यहाँ पर हम बात कर रहे थे रणवीर सिंह की. अभी गाना चल रहा था धुरंधर का, तो मैंने सोचा कि ये बात का भी अपडेट आपको दे ही दिया जाए क्योंकि हर रोज एक नया अपडेट आ रहा है बॉस. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ 8:00 हो चुके हैं, 50 मिनट मस्ती का मंत्रा चल रहा है. ट्यूजडे मॉर्निंग है, बहुत ही कमाल की. नाउ द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, यानी कि फॉइस, जिन्होंने लगाया नॉन कोऑपरेशन का डायरेक्टिव अगेंस्ट हमारे एक्टर रणवीर सिंह, क्योंकि उनका सडन एग्जिट हुआ फ्रॉम डायरेक्टर फरहान अख्तर की डॉन 3 से. अब बात ये भाई सीधा कोर्ट पहुंच चुकी है. वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल जो है, हु इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ये एक और एसोसिएशन है, उन्होंने चैलेंज किया है वॉइस को, यानी कि जिसने बैन लगाया हुआ है जी भाई. इन्होंने एक पिटिशन फाइल की है बिफोर द बॉम्बे सिविल कोर्ट, ठीक है, और उन्होंने ये कहा है कि बोथ फॉइस एंड ये जो इनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और अ ट्रेड बॉडी हैज अ लीगल अथॉरिटी टू इम्पोज अ बैन और डायरेक्ट अदर्स टू रिफ्यूज टू वर्क विथ समवन. तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है हाल ही में, दैट फॉइस व्हाटएवर दे हैव डन इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड इट्स नॉट विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, इट्स नॉट समथिंग दे कैन डू. We had gone to the competition wala commission and the court had also given a verdict that they cannot do this, that it does not fall within their rights. अब हुआ कुछ ऐसा है कि पहले ये पूरी बात थी फरहान अख्तर वर्सेस हमारे रणवीर सिंह के बीच में, अब उसके बाद फॉइस बीच में आई. अब फॉइस के अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी फेडरेशन, उन्होंने कहा कि ये तो मतलब ऐसे कैसे हो गया, हम भी इस मामले में घुसेंगे. तो अभी फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग मामला है. आई थिंक इस पूरे मामले में भी एक बॉलीवुड फिल्म बन सकती है, आपको नहीं लग रहा है? जिस हिसाब से ये चल रहा है, हर दिन एक नया पन्ना खुल रहा है. वहां पर रणवीर सिंह कह रहे हैं भाई मांडवली कर रहे हो, वो भी तैयार नहीं है. क्या होने वाला है आगे? कुछ नहीं होगा, सब अपना अपना काम करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ये बस बातें चलती रहेंगी ऐसा मुझे लगता है. बाकी तो जो होगा ऑफकोर्स वी विल लेट यू नो सीरियसली, बट इंटरेस्टिंग नहीं होता जा रहा है केस. क्या चल रहा है अभी? फेडरेशन लड़ रही है कि नहीं तुम्हारे हक में नहीं आता है, और वो कह रहे वो तुम्हारे हक में नहीं आता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? आई टेल यू, क्या करेंगे हम, गाने सुनेंगे. अच्छा सा गाना चलाती हूँ, ठीक है, इससे बाहर निकलने के लिए. बहुत ही कमाल का. रेडियो 24/7 लाइव पर गुड मॉर्निंग.

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. 9 बजे के उस पार वेलकम वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ एंड यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। गुड मॉर्निंग। एंड एक कंट्रोवर्सी से दूसरे कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि ये केसेस जो है ना वो चलते हुए ही जा रहे हैं। वेल बात कुछ ऐसी है कि भाई वाशु भगनानी, इनका नाम आपने सुना ही होगा, रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुआ। कौन? चुनारी चुनारी ये वाला गाना, क्योंकि एक मूवी रिलीज हुई, नहीं है उनका गाना रिलीज किया गया, वरुण धवन की मूवी ये जवानी है जवानी तो इश्क होना है। यस दैट इज करेक्ट। हुआ कुछ ऐसा कि भाई पहले वाशु भगनानी जी ने कहा कि ऐसा है कि ये जो हमसे राइट्स लिए नहीं गए हैं और ये वाले गाने जो हैं आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ये आपको हमसे पूछ के लेना चाहिए था। बट देन एवरीबडी सेड कि भाई ये राइट्स तो हमारे पास कब से रखे हैं, तो अब वो मान गए हैं। काफी बुरा। एंड ही हैज ब्रोकन अ साइलेंस अपने एसोसिएशन के साथ कि भाई रमेश तौरानी जिनको वो क्लेम कर रहे हैं कि despite helping him shape the key professional relationships, मैंने contribute किया हुआ significantly to his own success story, but अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है। In a very detailed statement, he kind of reflected on his decades long journey in entertainment industry में and of course the successful collaboration with हमारे David Dhawan साहब and his belief that rewards of cinema should be shared with people who help you create it. And one of the defining moments were, of course, this, the release of the blockbuster Kooli number 1 ke time ki ye baat hai. Kehta hai ki maine to personally gift kiya tha ek car to each David Dhawan and Govinda as a gesture of appreciation for their contribution to film success. Aur dekh lo aaj jo hai kya din aa gaya hai. Ab wo mujhe pooch hi nahi rahe hain, wo mere rights ko right hi maan rahe hain. I tell you seriously. ये मामला भी उतना ही पेचीदा होता हुआ जा रहा है। हालांकि अपडेट ये है कि गाने पहले ये लोग कह रहे थे रिलीज नहीं होने देंगे, बट गाने रिलीज हो चुके हैं। एवरीबडी हैज कमेंटेड ऑन इट एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो कमेंट्स ऑन द गाना। आई थिंक धुरंधर जो है ना, उन्होंने बार बहुत हाई सेट कर दिया है विद द रिक्रिएशन ऑफ एनी सॉन्ग। इफ यू पिक अप अ सॉन्ग यू हैव टू डू जस्टिस विद इट। या Somehow I agree with Abhijit Da ki khana thoda sa acha bana dete to acha ho jata. But well, anyways, humme kya sanno ki bol ke aage badhte hain Radio Masti 24/7 live par. Good morning.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स और मस्ती का मंत्र विद आरजे हंत्रा।
5: आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। जब लड़का स्टंट दिखता हो और उसके बाद देता हो पूकी गोल्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। 9:00 हो चुके हैं 19 मिनट। मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्र। आप कौन है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ? विराट द कोहली, दैट इज राइट। फॉर द सेकेंड टाइम इन द रो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आपको तो पता ही है, लिफ्टेड द IPL का ट्रॉफी। जी हाँ, बीटिंग द गुजरात टाइटन्स बाय 5 विकेट्स। भाई ये संडे रात की बात है जब ये हुआ। इट वॉज विराट कोहली जो जिन्होंने ओपन किए इनिंग्स एंड स्टेड एट द क्रीज टिल द वेरी एंड, रिमेनिंग अनबीटन ऑन 75 एज RCB सिक्योर्ड द विन। एंड नाउ उनकी वाइफ एंड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, शी शेयर्ड अ पिक्चर सबके साथ। एंड इन द पोस्ट अनुष्का सीन काइंड ऑफ प्लांटिंग अ प्यारा प्यारा किस ऑन विराट्स फोरहेड। शी इज वेयरिंग दिस व्हाइट कलर का शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स, वेरी बेसिक। कभी भी आप अनुष्का शर्मा को देख लो, कहीं पर भी जाती है, शी इज, आई एम ग्लैड दैट शी इज नॉट OTT लाइक ओवर द टॉप, एंड शी इज लाइक वेरी वेरी बेसिक, शी लुक्स रियली नाइस। एंड कपल जो है वो ट्रॉफी पकड़े हुए इस पिक्चर में नजर आ रहा है। नाउ अब पूकी गोल्स तो है ही, आप कभी भी विराट को देख लो, है ना, वो ग्राउंड पे भी रहता है और अनुष्का अगर कहीं पर भी स्टेडियम में रहती हुई है ना, तो वो कुछ ना कुछ उसको या तो फ्लाइंग किसेस उड़ा रहा है उसके पास, या तो फिर यू नो अभी हाल ही में ये वाला जब फाइनल मैच हुआ तो ग्राउंड से वो उसको बता रहा था, तूने मेरा डाइव देखा, तूने देखा मैंने कैसे डाइव मारा। आई मीन हाउ क्यूट इज ही मैन, लाइक सीरियसली वाला। बट वेल, दिस वन पर्टिकुलर पिक्चर जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ऑलरेडी इट हैज 2 मिलियन लाइक्स। इट्स लाइक वायरल जाने के लिए ये काफी है मेरे दोस्त, इतना सा कर दो बस। हाय, है ना, विराट कोहली तो वैसे भी सबको पसंद ही है इतना, है ना, झूठ मत बोलो। वैसे एक ये तो हो गई IPL की बात एंड 2 मिलियन लाइक की बात। आपने ये मूवी के बारे में सुना है? इट्स कॉल्ड ऑब्सेशन। Let me come back and talk about it. I like everybody's asking me to watch it. Radio Masti 24/7 live par filhal ke liye lete hain ek musical break.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: यार क्या गाना है ये यार, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, एकदम ऐसा लगता है कि आप शाहरुख खान के साथ ना उसी बाइक पे बैठे हुए हो, है ना, और वो जो कर रहा है आप भी वही कर रहे हो, फुल ऑन फील आती है, आई कैन जस्ट काइंड ऑफ इमेजिन। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ट्रैफिक अपडेट। ऑफ कोर्स ये वो भी सड़कों पे थे, हम भी सिंगापुर की प्रेजेंट सड़कों पे आते हैं। 9:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, आपको बताया जाएगा कि क्या है ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेक डाउन आपको मिलने वाला है ऑन PIE टुवर्ड्स इटवास आफ्टर जलान बहार, अवॉइड करें लेन नंबर 1। एक एक्सीडेंट हुआ है ऑन कैन हिल रोड टूवर्ड्स बेडफोर्ड रोड आफ्टर कैन हिल सर्कल, सो अवॉइड करें लेन नंबर 2। और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर इन MCE टनल टूवर्ड्स AYE बिफोर सेंट्रल बॉलीवुड। सो यस, ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। बाकी आई वॉज टेलिंग यू, गोइंग टू टेल यू अबाउट द मूवी एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट योर रिकमेंडेशन एंड व्हाट आर यू वॉचिंग। सो आप सोचिए कि आप मुझे क्या बिल्कुल चकाचक रिकमेंड करने वाले हैं। मैं आपको चकाचक वाला गाना सुना के हुणे वापस आई हुणे।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
0: We love you.
3: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wedge and Non-Wedge dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
4: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
5: हाँ जी हाँ जी, वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पर। और भाई यस, शाही महारानी के हो रहे हैं 25 साल कंप्लीट। एंड ऑफ कोर्स जब इतने साल आप किसी चीज के कंप्लीट करते हो तो सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली बनता है, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू सो मच, यू हैव सीन थ्रू सो मच। एंड कितनी खूबसूरत सी बात है ना, शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, ना जाने इन्होंने कितनी कहानियां बनते हुए और उनको जीते हुए देखा होगा। एवरी टेबल हैड अ स्टोरी and for so many years they have catered, they have served to these beautiful memories and beautiful stories, right? But ab wo waqt hai ki jab hum jaake wahan par celebrate kare aur kahe thank you for letting us make those beautiful memories with you, kyunki banta to hai, pura haq banta hai। That is right bhai, unka anniversary special jo hai bilkul wahan par chal raha hai and it is gonna go on till 30th of June, 25 years of the royal flavors we have enjoyed at Raffle City। So khas baat ye hai ki इस 25 years को celebrate करने के लिए शाही महारानी के जो signature classic dishes है ना, they are going to give you at $25 plus. So हर table पे if your bill is $100 plus and above, then आप के सारे signature classic dishes शाही

रानी के हो जाएंगे $25 प्लस प्लस. एंड दिस होल थिंग इज अवेलेबल ओनली फॉर अ डाइन इन, क्योंकि यार जाके एक्सपीरियंस करना और सेलिब्रेट करना ही इट मेक्स सेंस राइट. तो चाहे वो उनके वेज सिग्नेचर क्लासिक डिशेस हो लाइक द शाही सब्स सिजलर या फिर पालक पनीर या फिर नॉन वेज वाले हो जैसे चिकन टिक्का हो गया, तंदूरी चिकन हो गया, आई मीन इट्स जस्ट मेरे को तो सोचकर ही इतना स्पेशल लग रहा है. नॉट ओनली आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स एंड रिलिश्ड एंड सेवर्ड एंड अमेजिंग ड्रूल्ड ऑन देयर फूड, ऑल्सो ऑन रेडियो इतनी बार मैं बात कर चुकी हूँ एंड एवरी सिंगल टाइम आई टॉक अबाउट इट आई एम लाइक लिटरली आई हैव वाटर इन माई माउथ थिंकिंग अबाउट द सेम. सो कंग्रेचुलेशंस टू शाही महारानी एंड येस इट इज दैट टाइम दैट आप भी रिजर्वेशन कराए वहां पर जाए एंड सेलिब्रेट दीज 25 ईयर्स का सेलिब्रेशन विद देम. 6235-8840 एंड दैट्स द नंबर एंड इफ यू वॉन्ट टू विजिट देयर वेबसाइट देन दैट्स www.shahimaharani.com. टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो तो अप्लाइड है ही है, बट बस हमारे कहने पे इस बार एक बार सेलिब्रेट करने पहुंच जाओ नहीं.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: दोस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: 9:52 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। यस, आपने सही सुना है। इसका मतलब है कि 7 बजे से अब 10 बजने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ थी बिल्कुल 7 बजे से। गुड मॉर्निंग, आई होप यू हैड अ ब्यूटीफुल वंडरफुल किक स्टार्ट टू योर ट्यूसडे मॉर्निंग। अब बाकी का दिन आपका वैसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। अभी फिलहाल इसी के साथ जो है ना, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए जाते हैं और फिलहाल एक लेते हैं म्यूजिक कैफे वाला ब्रेक, छोटा सा एकदम नन्ना मुन्ना सा और उसके बाद हमारी नुपुरवा यानी कि आरजे नुपुर आ जाएंगी मस्ती मॉर्निंग्स लेकर, और फिर होगी शाम को आपसे मुलाकात ऑन डियर मस्ती दिल से। यस, विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड विद अ लॉट ऑफ न्यू लेटर्स एंड सिचुएशंस टू टॉक अबाउट एंड यू नो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन दोस थिंग्स। सो यस, मेक श्योर दैट ट्यून इन टू दैट एज वेल। हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। Bye-bye. Take care.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और अभी जो एक प्रकार सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है वो है क्रिकेट देखने वाला टाइप, राइट? एवरी थर्ड पर्सन इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अरे अरे अरे, सो मेरे जैसे नॉन क्रिकेट लवर्स कहाँ जाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे? अरे आपको सब पता है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? कि भाई म्यूजिक में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, बॉलीवुड में क्या इनसाइट चल रही है, किसके यहाँ तरक्की हुई है और किसके यहाँ नुकसान हुआ है, और अभी कोई नया एक्टर लाइंड अप है या नहीं, या फिर इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या हालचाल पहुंच गए हैं। चलिए मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको हर एक इनसाइट पॉसिबली यहाँ पे देने के लिए आ चुकी है। सो डेफिनेटली बने रहिए, बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें कर रही है आपका इंतजार। चलिए चलिए चलिए, ट्यूजडे का बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: 1/2 kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
2: वॉट एक टाइम पे गलतियां होती थी तो हम इरेजर लेकर वो चाहे व्हाइट वाली हो ब्लैक वाली हो या रेड वाली हो या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली हो हम ये इरेजर लेकर अपनी गलतियां मिटा देते थे। लेकिन अब अब तो गलतियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो समेटे नहीं समेट रही हैं। मतलब तीन तीन साढ़े तीन तीन घंटे की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं कि पूरी दुनिया देख चुकी है। डेफिनेटली ये मूवी नहीं उसी मूवी से जुड़ी हुई गलती की बात चल रही है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर आपकी यादें बहुत ताजा हैं तो आपको याद होगा 2015 में एक मूवी आई थी तमाशा। रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण जो है वो हमें इनडायरेक्टली दिखा गए थे कि अपने सपनों को चेस करो, नौकरी को छोड़ दो और बस दुनिया जी लो। और इस बात को हमने इतना सीरियस ले लिया कि भाई बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ दी। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी इतनी नहीं चली थी लेकिन By the time, लोगों को OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। मतलब इसे थिएटर्स में री-रिलीज भी कर दिया गया, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो इस मूवी ने इनडायरेक्टली हम सबको कहा मूवी छोड़ो सपने पकड़ो, मूवी छोड़ो सपने पकड़ो। एंड ये बात जो है इम्तियाज अली यानी फिल्म मेकर जो है उन्हें बहुत बुरी लगी कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ी और गलत डिसीजन ले लिए। बाय द टाइम इस मूवी को इन्होंने एक गलती का रूप जरूर दिया लेकिन यार एक आइकॉनिक एग्जाम्पल है ये। इस मूवी का हर एक सीन की लोकेशन हर एक गाना आय हाय हाय हाय मतलब आई प्लीजिंग है यार। अगर आपने नहीं देखी है डू वॉच दैट आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: 40% off, 40% joy alukas,
2: 40% off, oh my god, let's go,
3: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge, joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? हर एक चीज का सीजन आता है। हाँ, तो अभी सीजन चल रहा है मैंगो का। एंड यू नो व्हाट, इंडिया से 1% मैंगो जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। हाँ, और कुछ तो सिंगापुर भी आते हैं। और अगर आप ऐसे इम्पोर्टेड मैंगोज में हाई क्वालिटी वाले मैंगोज ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई टॉक्सिक सा केमिकल ना अप्लाई हो कि वो कहीं मैंगो खराब ना हो जाए, मतलब आप एकदम प्योर ऑर्गेनिक चीज ढूंढ रहे हैं ना, तो आप घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं ggmartonline.com से। राइट, अगर आपका डॉलर 70 सिंगापुर डॉलर से अबव हुआ तो फ्री डिलीवरी भी मिल जाएगी। इवन देवगढ़ के अल्फांजो या फिर रत्नागिरी से अल्फांजो मैंगोस चल के आपके घर तक आएंगे। 10% का डिस्काउंट भी है जिसके लिए आप कूपन कोड डाल सकते हैं new10, कैपिटल लेटर में new10, एंड डेफिनेटली प्योर ऑर्गेनिक मैंगोज मिलेंगे आपको ggmartonline.com पर। लॉग ऑन करो, अपनी पूरी लिस्ट बनाओ और क्विकली ऑर्डर करो। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: चाहे आप डाइट कॉन्शियस हो या ना हो, ये वाला लड्डू तो खाना ही पड़ता है। एंड बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ शादी के लड्डू के बारे में। सिंगापुर में वैसे अब तो यार बहुत सारे मिठाइयों के ऑप्शंस हो गए हैं एंड हम उनमें से चूज कर लेते हैं, लेकिन काश इतनी वैरायटी शादी के लड्डू से पहले भी हमें मिल जाती। ऐसा सोचा होगा ना आपने, मुझे सब पता है। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। बाय द वे, शादी के लड्डू जैसे डिस्कशंस पता है किसके साथ हुए हैं? शिल्पा शेट्टी की सिस्टर शमिता शेट्टी के साथ। एंड जी, उन्हें कई सारे एज शेमिंग कमेंट्स एंड ये ट्रोलिंग कि वो शादी क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, ऐसी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उन्होंने अपनी स्टोरी में लगाकर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि आपने क्या उखाड़ लिया वक्त पर शादी करके जो मेरे पीछे लगे हुए हो। आ जाता है यार, गुस्सा आ जाता है यार, मतलब स्वाभाविक है। आप और मैं भी कई बार वो बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, राइट? तो इन एक्टर्स को भी आ जाता है यार। नुपुर आपके साथ है। आते आते बहुत सारे गाने आ रहे हैं, सो डोंट गो एनीवेयर। आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

मुझे ना इनकी बातें सुनकर अल्लू अर्जुन का वो वाला डायलॉग याद आ गया, झुकेगा नहीं। डेफिनेटली पुष्पा मूवी का ये डायलॉग, उनका एटीट्यूड बहुत ही अनरियलिस्टिक सा है, लेकिन पसंद तो आ गया। अब आ गया तो आ गया, अब आप हमारी मेमोरी से मिटा नहीं सकते हैं भाई साहब। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड डेफिनेटली अगर हम बात करें कि झुकेगा नहीं ये वाला डायलॉग बॉलीवुड में किसने बोला है, उर्वशी रौतेला। हां जी, हर चीज को अपने आप को वो वर्ल्ड फेमस करके बताती हैं। कभी उनका इंस्टाग्राम का बायो देखना, वो हर एक चीज में बताती हैं कि उन्होंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन रिसेंटली उर्वशी रौतेला ने एक मीम को बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देखा है। उस मीम में क्या था कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जिसमें उर्वशी भी है, राइट, वो ऐश्वर्या राय के सामने घुटने टेक रही है और ये मीम उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि इतनी तौहीन आप किसी की नहीं कर सकते, गलत बात है यार। हाँ जी, नुपुर आपके साथ है एंड डेफिनेटली बॉलीवुड में बहुत सारा ट्रोलिंग चल रहा है, ड्रामा चल रहा है जो आप तक पहुंचेगा मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
0: ये चर्चे तो यार चलते ही जा रहे हैं कि यार पिंक ड्रेस पहनकर, पिंक कोरल का नेकलेस पहनकर चेहरा इतना पिंकिश क्यों नजर आ रहा है आलिया भट्ट का। डेफिनेटली कांस की बात करें तो रिसेंटली आपने आलिया भट्ट के कपड़े, उनका मेकअप तो देखा होगा, लेकिन उनके गले में जो हाई एंड पिंक कोरल की ज्वेलरी थी, जिसमें ऑफकोर्स ये स्टोन्स तो थे ही, डायमंड्स भी थे, तो ये जो पूरा पेयरअप है ना, वो बहुत बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए, ऐसे एक्सक्लूसिव डिजाइन अगर आप भी नोटिस करते हैं तो आपको पहुंचना चाहिए कहां, जोया लुकास, जो कि वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर है, सिरान कोन रोड सिंगापुर। मैं आपको यूं ही जाने को नहीं बोल रही हूं, एक्चुअली यहां पे चल रहा है फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोलके एंड प्रेशियस ज्वेलरी। एंड ये जो ऑफर है सिर्फ 14th जून तक है। किस बात का कर रहे हो इंतजार? यहाँ पे आप 100% वैल्यू भी पाएंगे डायमंड एक्सचेंज पर, इजी पेमेंट प्लान्स भी हैं, तो पहुंचिए सिरानगंज रोड। मैं आज यहां पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: पूरी दुनिया में सबसे पहले डर किससे लगता है? अपनी मामा से, हाँ, और उसके बाद पापा से, या पहले पापा से फिर मामा से? ओके, तो थर्ड नंबर पे भी तो कोई आता होगा, डेफिनेटली लाइफ पार्टनर से डर तो लगता है। एंड डेफिनेटली अगर हम सोशल मीडिया के मीम्स के ऊपर जाएं, तो पतियों को सबसे ज्यादा डर लगता है बीवियों से। और ये जो आत्मकथा है, ये घर घर की नहीं है, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर की भी है। सो डेफिनेटली मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड बताना चाहूंगी बॉबी देओल जो अपने सिक्स पैक एब्स अपने विलन वाली रोल के लिए बहुत ज्यादा हर तरफ पॉपुलर चल रहे हैं, और ये पॉपुलैरिटी उन्हें बहुत लेट मिली। लेकिन हाँ, एनिमल मूवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी एक आई थी सीरीज, राइट, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गए। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, जिसमें वो एक साधु महाराज बने थे। हाँ, तो रिसेंटली बॉबी देओल ने बताया कि उस सीरीज के बारे में, जिसमें इन्होंने एक अच्छा खासा बदमाश, वो होता है ना कि पाखंडी बाबा का रोल जो होता है, वो इन्होंने निभाया था, और बहुत सारे सेंसिटिव उसमें सीन्स भी आए थे, राइट। तो ये बात इन्होंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ अपनी बीवी को छोड़ के, बिकॉज इन्हें पता था कि अगर ये चीजें आउट हुई तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, या वो कह सकते हैं शॉकिंग अगर किसी के लिए हो सकता है, तो वो है उनकी वाइफ। तो इन्होंने ये सारी बातें उनको बता के रखी थी। एंड डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ के हर डिसीजन अपने पार्टनर को बता के चलने चाहिए, तो आप सेफ प्ले करेंगे, सही गलत प्ले करेंगे। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: 40% off, 40% joy Lucas.
3: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
4: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
0: You know what? वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे हर चीज का लेवल अप हो रहा है। लोग अपने घर को होटल्स बनाते जा रहे हैं, होटल्स को घर समझते जा रहे हैं, नॉर्मल ट्रैवलिंग को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो चीजें लेवल अप हो रही हैं, लोग अपने खर्चे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली RRR मूवी में आपने जब देखा था रामचरण को, राइट, उन्हीं का एक किस्सा निकल कर आया है। इन्होंने पता है अपनी अपकमिंग मूवी पेड्डी का प्रमोशन करने के लिए अपने आसपास ना एक कह सकते हैं अफ्रीकन फाइटर बॉडीगार्ड रखा है। हाँ जी, उस फाइटर का नाम है केविन कुंटा एंड वो हर रोज 2-4 लाख के बीच चार्ज करता है। कैन यू इमेजिन द प्राइस? मतलब लिटरली इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएम सीएम का जो लेवल होता है ना एक सिक्योरिटी को लेकर, उसको कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करी है। अरे बाप अरे बाबा, तो ये लेवल अप खर्चे जरूर पता चलते रहेंगे रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, बिकॉज बॉलीवुड की हर इनसाइट्स मैं आरजे नुपुर लेकर आती है मेरी जान।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

देखो घर की बातें घर में रहे ना रहे, लेकिन वो होता है ना कि यार हमारी प्रिवेसी तो हम तक रहनी चाहिए। ये प्रिवेसी जैसी जो चीज है ना, सिंगापुर शिफ्ट होने के साथ बहुत धीरे धीरे समझ में आती है। मतलब आइलैंड वाइड आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी से उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर उसकी परमिशन के बिना ज़बरदस्ती नहीं मांग रहे हैं। मतलब एक होता है यार, आप पब्लिक व्हीकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप एक डिसेंसी मेंटेन करके चल रहे हैं, बिकॉज प्रिवेसी का पार्ट यहाँ पढ़ा दिया जाता है। बट आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में ये पार्ट मुंबई जैसी माया नगरी में भी नहीं पढ़ा जा सकता, बिकॉज वहाँ पे चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे। बिल्कुल, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली सलमान खान कहीं अपने पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिनर पे गए थे और वहाँ की क्लिप इमेजेस भी निकल कर सोशल मीडिया पे आ गई। बताओ यार, कोई भी नहीं चूक रहा है इन चीज़ों से। आज ऊपर आपको कुछ और भी बातें बताएगी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार और थोड़ा निगरानी रखनी पड़ेगी कि कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा। हाँ, आती हूँ मैं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
3: क्या जी?
4: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com, grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: देखो मैं लड़की होकर ये बोल सकती हूँ कि दो लड़कियां सच में उतनी अच्छी फ्रेंड हो ही नहीं सकती जितने दो लड़के हो सकते हैं। अरे अगर किसी ने आपको इसका ऑपोजिट आंसर दिया है ना तो वो झूठ बोल रहा है यार। मैं सच्ची बता रही हूँ, सच्चाई यही है, जो है वो है, मान लीजिए आप। सो हेलो हाय, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि दो लड़कियां आपस में दोस्त नहीं हो सकती, ये बात सच्ची है क्या? तो भाई शार्वरी जो है और आलिया भट्ट जो है वो इम्तियाज अली की अपकमिंग मूवी मैं वापस आऊंगा में एक साथ दिखने वाली है। और सवाल पूछ लिया गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो शार्वरी ने साफ साफ कह दिया है प्लीज ना प्लीज, ऐसा हमेशा नहीं होता कि दो लड़कियां आपस में दोस्त ना रहे, मैं और आलिया तो बहुत अच्छी दोस्त है। देखो अभी मूवी जब तक नहीं आ रही है तब तक तो ये लोग दोस्त है, उसके आगे का जरा देखना पड़ेगा। आई डाउट यार, आई डाउट डेफिनेटली यार। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
1: हूँ। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

रिसेंटली मुझे ना कुछ लोगों की फोटोज वीडियोस देखकर छोले भटूरे खाने का मन हो चुका था। पूछिए कैसे, क्योंकि नेहा धूपिया जो है ना वो अमृतसर पहुंची थी और अमृतसर की पिक्चर्स ऑफकोर्स गुरुद्वारे की तो डाली पर छोले भटूरे की भी डाली। आय हाय, अब सिंगापुर में ऐसा ऑथेंटिक टेस्ट वाला फूड कहाँ मिल सकता है जिसके हमें सपने आते।

the occasion of 25th anniversary, अगर आपकी टेबल का बिल 100+ डॉलर हुआ तो इस मौके का फायदा उठाइए एंड डेफिनेटली पहुंचिए एडवांस में रिजर्वेशन करके शाही महारानी रेस्टोरेंट। हाँ जी, डिटेल के लिए www.shahimaharani.com विजिट कीजिए या कॉल कीजिए 6235884। ओ आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है मेरी जान।

0: Devrani for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
2: Thank you.
3: Thank you. Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
5: क्या
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
5: वाजी, क्या बात जी.
6: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: मान लीजिए आपकी मूवी नहीं चल रही है, मान लीजिए आपका टीवी सीरियल नहीं चल रहा, ओटीटी कोई सीरीज नहीं चल रही है, आपकी तरफ कोई नजरें घुमा कर नहीं देख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अरे सोचना चाहिए ना कि और क्या किया जाए। लेकिन आजकल एक्टर्स ना ऐसे ही पॉइंट पे आकर अपने सेपरेशन, अपने डिवोर्सेस अपलोड कर देते हैं ऑन सोशल मीडिया, और उनकी पॉपुलैरिटी

मल्टीप्लाई हो जाती है। सो रिसेंटली मौनी रॉय ने भी अपना सेपरेशन शादी के चार साढ़े चार साल बाद ही अपलोड कर दिया। एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबको पता है कि मौनी रॉय जो है वो दिशा पाटनी की बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों एकदम बहनें ज्यादा हैं, दोस्त कम है यार। और उसके बाद ये भी निकल कर आया कि कहीं दिशा ने कुछ ऐसा ना बोला हो जिसकी वजह से मौनी का जो है डिवोर्स वाली सिचुएशन आ गई हो। तो ये कॉम्प्लिकेशंस चल ही रहे थे कि रिसेंटली मौनी रॉय ने एज अ सिस्टर दिशा को प्रमोट करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दिया, तो ट्रोलिंग शुरू हो गई। उसके बाद मौनी रॉय ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। मतलब ये सब चल क्या रहा है, चाहते क्या है ये एक्टर्स, इनकी लाइफ सच में इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है या फिर हमें लगती है यार। हाँ, आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर कॉम्प्लिकेटेड से लेकर आसान से आसान बातें बता रही थी। चलिए अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
4: 1, 2, 3, 4 Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
5: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. DJ.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इम्पैक्ट।
3: 3, 2, 1
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
1: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
6: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया? कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए यूट्यूब
0: Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
4: 3, 2, 1
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
2: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp.

Good evening and welcome to Dear Masti Dil Se, only on Radio Masti 24/7. हर रोज हम यहाँ पर सोचते हैं जब हमारा अगला शो होगा ट्यूसडे को तो वो कैसा होगा, उसमें हम किस बारे में बात करेंगे. वील टॉक अबाउट लाइफ, बट व्हाट वी एक्चुअली रिसीव फ्रॉम यू आर पीसेज ऑफ रियल लाइव्स फ्रॉम यू. और आज की चिट्ठियां वंस अगेन हमें याद दिलाती हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स, इमोशनल और क्वाइटली हैवी हो सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा और आपका रहना. कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पीआर एप्लीकेशन के रिजेक्शन से, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, आइडेंटिटी है एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक आफ्टर बिल्डिंग अ लाइफ हियर इन सिंगापुर. और कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अब घर से बाहर जाने के लिए तैयार हैं. जी हाँ, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सडनली घर बड़ा ही चुपचाप सा लगने लगा है. तो अब माँ बाप किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं अपने लोनलीनेस में. और कुछ जगह कुछ फ्रेंडशिप्स हैं जो टूट रही हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि एक फ्रेंड डील कर रही है हेल्थ इश्यूज से और जरा डिफिकल्ट होती जा रही है. द क्वेश्चन इज हाउ डू यू सपोर्ट समवन विदाउट लूजिंग योर ओन पीस. और कहीं कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ पर एक पार्टनर स्लोली ही इज डिसअपीयरिंग इनटू द फोन एंड दूसरा उसको ऐसा लगता है कि वो अनसीन है, अनहर्ड है, इमोशनली अकेला पड़ गया है. डिफरेंट स्टोरीज बट वन कॉमन थ्रेड, पीपल ट्राइंग टू होल्ड रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी एंड इमोशनल बैलेंस इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग. No filters, no judgment, just your letters. Dear Masti, Dil Se. और शायद इसीलिए हमारा ये शो एग्जिस्ट करता है, आपको जज करने के लिए नहीं और ना ही डिसाइड करने के लिए कि आप सही हैं या गलत, लेकिन जस्ट टू पॉज, टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइज बीनीथ बिहेवियर, फियर, लोनलीनेस, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस या सिंपली एग्जॉशन. तो अगर आप आज ये शो सुन रहे हैं और आप अपने आप को किसी भी कहानी में देखते हैं, देन स्टे विद अस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टॉक थ्रू देम वन बाय वन विद जस्ट सुपरफिशियल बिहेवियर. हमारे यहाँ ऑनेस्टी है, एम्पथी है और रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी है, टेक्स्ट बुक आंसर्स नहीं है. ये है डियर मस्ती दिल से, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम फील करते हैं. ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
2: एक्साइटेड
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: आम ले लो ताजा मीठा आम ले लो GGMartOnline.com से आम ले लो
5: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577
6: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
7: तो चलिए शुरुआत करें क्या तैयार हैं आप आज की हमारी पहली चिट्ठी के लिए?
8: Dear Musti, दिल से, because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है
7: इन्होंने लिखा है कि ये कंफ्यूज्ड फ्रेंड है लेकिन मैं तो कहूंगी ये बहुत ही बेहतरीन दोस्त है डियर मस्ती दिल से आई एम राइटिंग अबाउट अ फ्रेंडशिप दैट हैज लेफ्ट मी क्वाइट कंफ्यूज्ड मेरी एक फ्रेंड है जो जनरली इज फन टू बी अराउंड लेकिन कुछ सालों से ऐसी हैबिट्स ही बना ली है कि वो बहुत रूडली कॉमेंट करती है जो कि वो कहती है कि जोक्स हैं It's often what people call dark humor, sarcasm and a lot more. The problem is that many people हमारे ग्रुप में जो हैं वो uncomfortable feel करते हैं और हमने आपस में बात भी करी है उससे अलग होकर कि हम hurt होते हैं और offend भी हो जाते हैं by some of her comments. मैंने खुद भी यही belief, यही experience किया है. There have been occasions when I went home thinking about something she said and wondering why it bothered me so much. Recently मुझे पता लगा that she has also been dealing with some health challenges, including epilepsy and other mental health related struggles. मुझे details नहीं पता है, but मुझे लगता है कि क्या ये behavior link हो सकता है with what she is going through. Now I feel torn. On one hand, I want to be compassionate and understanding. If someone is struggling, I don't want to make their life harder. On the other hand, मुझे ऐसा लगता है कि should I simply accept the behavior that hurts me or others? When she says, if she says something offensive again, क्या मुझे respond करना चाहिए and tell her that it is not okay? Or should I say quiet because she is dealing with health issues? Where do we draw the line between empathy and setting boundaries? बहुत ही practical सा सवाल, बहुत ही practical सा मतलब friendships में कई बार किसी इंसान ने कुछ ना कुछ कह दिया और दूसरे को hurt हो गया, well उसको पता भी नहीं लगता, है ना?
9: ख्यालों में लाखों बातें यूं
7: तू जाने ना सुनते हैं गाना वापस आके इस बात का जवाब भी आपस में डिस्कस करके मान जाएं चलिए इंतजार कीजिए इस गाने का और मैं इसके उस पार आकर आपको बताती हूँ कि इस फ्रेंड से और इस फ्रेंडशिप से कैसे डील किया जाए गुड इवनिंग

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से. जी हाँ, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट अ लेटर फ्रॉम अ कंफ्यूज्ड, एंड आई सेड दैट इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग सेंसिबल फ्रेंड, जिन्होंने लिखा कि दोस्ती में, ग्रुप में अगर कोई रूड बिहेव करे, ऑल्दो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम यू नो हेल्थ प्रॉब्लम, तो हमें क्या चुप रहना चाहिए और अपनी बेइज्जती और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, या हमें कुछ बोल देना चाहिए ताकि ये बात रोज रोज ना हो और हम भी हर्ट ना हो. डियर मस्ती दिल से, पहले तो मैं कहूंगी थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बिकॉज ये एक बड़ा ही कॉमन सा इशू है. बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बिकॉज मेनी ऑफ अस फेस इट एट सम पॉइंट. लेकिन पहली चीज हमें ये समझनी है कि किसी की स्ट्रगल एंड एक्सेप्टिंग हर्टफुल बिहेवियर, दीज आर नॉट द सेम थिंग. एक इंसान डील कर रहा होता है अपने हेल्थ चैलेंजेस से, इमोशनल डिफिकल्टीज से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हाउ दे ट्रीट अदर्स. कंपैशन एंड अकाउंटेबिलिटी कैन एग्जिस्ट टुगेदर. बहुत जरूरी है नॉट टू अज्यूम दैट एवरी रूड कॉमेंट इज कॉज्ड बाय अ मेडिकल कंडीशन, क्योंकि कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते, हमें पता नहीं है. लेकिन हमें ये पता है कि हाउ द बिहेवियर मेक्स पीपल फील. अगर एक फ्रेंड आपको कुछ ऐसे कहे जो आपको हर्ट करे, एम्बेरस करे या ऑफेंड करे, तो इट इज परफेक्टली रीजनेबल टू एड्रेस इट. पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन नहीं, ना गुस्से से, लेकिन ऑनेस्टी से. सो अगर आपको अगली बार ऐसा लगे कि उसने कुछ ऐसा कह दिया सबके सामने और वट एवर, देन इन अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आप उससे एक छोटी सी बात करें. बोले, आई नो यू मे नॉट मीन हार्म, बट सम ऑफ दोज कॉमेंट्स आर डिफिकल्ट फॉर मी टू हियर. क्योंकि आप बिहेवियर की बात कर रहे हैं, आप अटैक नहीं कर रहे हैं उस इंसान को. द हेल्दीएस्ट फ्रेंडशिप्स, बिलीव मी, आर नॉट द वंस वेयर पीपल स्टे साइलेंट. दे आर द वंस जहां लोग ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली बात करते हैं. Empathy means trying to understand someone's pain. Boundaries mean protecting your own well-being. You do not have to choose one on the other. Strongest relationships mein dono cheeze hoti hain. So hamari advice to yahi rahegi, be kind, be understanding, but do not ignore your feelings. Ek achhi friend deserve karti hai compassion, lekin aap bhi deserve karte hain respect. Nahi to dosti chalegi nahi, hai na? Aur agar aapko wo dosti preserve karni hai, to phir believe me, आपके दिल को धड़कने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है. बढ़े अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ. बिफोर आई लेट माई अदर कोजॉक्स कम इन एंड टॉक अबाउट द लेटर्स दैट हैव बीन शेयर्ड विद देम, गुड इवनिंग वंस अगेन. इट इज डियर मस्ती दिल से. इंतजार कीजिएगा, आऊंगी जरूर वापस.

रिश्तों में मैचिंग ढूंढना कपड़ों में मैचिंग ढूंढना से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो बहुत ही इजीली मिल जाता है, हमें लगता है यही हमारी आखिरी चॉइस है, बट बाय द टाइम हमें एहसास होता है कि अरे नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है यार। सो मैं आरजे नुपुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। एंड द पॉइंट इज कि मैचिंग मैचिंग तो बाद में हो जाएगा, लेकिन अगर

0: है या कुछ और, मैं आपको बता दूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर आपने यही सिचुएशन आज से 4 साल 5 साल बाद देखी होती, जब आप उस मोमेंट में होती कि सामने वाला बंदा या बंदी आपका पार्टनर बनने लायक है भी या नहीं, मतलब फॉरएवर पार्टनर की बात कर रही हूँ, तब ये पता चलता तो कितना गलत होता। अगर आपने इनिशियली ही ये स्टेप ले लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अलग अलग अच्छे हैं पर हम दोनों साथ में अच्छे नहीं है, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। मतलब या तो आप थोड़ा सा बिहेवियर में अल्टरेशन करके देखिए, अगर वो चीजें नहीं बैठ रही है ना, तो बहुत हंसकर प्यार से चीजें जो है वो स्प्लिट आउट कर लीजिए। अदरवाइज मैं नहीं चाहती कि आपकी आंखों में मैं आंसू देखूं।
1: चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता।
0: बिल्कुल, आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर स्माइल देने वाले गाने कर रहे हैं आपका रेडियो मस्ती पर इंतजार, definitely dear masti dil se show par.
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, ऐसा कहा जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर डिस्टेंस है, द डेफिनेशन ऑफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद एवरी रिलेशनशिप। नहीं, व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, अब अंतरा की बारी है यहाँ पर अगली चिट्ठी पढ़ने की। एंड व्हेन आई रीड द लेटर यू विल गेट टू नो व्हाई अगेन, ऑफ कोर्स आफ्टर नुपुर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। भाई, एक डिस्टेंस जो नुपुर ने बात की, दूसरा डिस्टेंस जो बच्चे एंड पेरेंट्स के बीच में हो जाता है, नॉट द इमोशनल वन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट विल, बट दिस इज द फिजिकल डिस्टेंस। So, आइए बढ़ते हैं हमारी अगली चिट्ठी। डियर मस्ती, माय डॉटर रिसेंटली मूव्ड ओवरसीज फॉर यूनिवर्सिटी। आई वाज सो बिजी रेजिंग हर दैट आई फॉरगॉट टू बिल्ड अ लाइफ बियॉन्ड बीइंग अ मॉम। द हाउस फील्स अनयूजुअली क्वाइट नाउ। हाउ डू पेरेंट्स डील विद दिस फेस? मतलब ये लेटर पढ़ते ही मुझे लगा कि कितने सारे पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं साइलेंटली अपना हेड नॉट कर रहे होंगे कि यस, वी आल्सो फील द सेम। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी स्कूल टाइमिंग्स, एक्टिविटीज, मील्स, होमवर्क, उनकी खुशी, उनका टेंशन, धीरे धीरे वो पूरी की पूरी हमारी दुनिया बन जाती है। और फिर एक वो दिन आता है, वो दुनिया सूटकेस पैक करके यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और घर में सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी खाली, किचन में थोड़ा कम काम, दिल में थोड़ा ज्यादा सन्नाटा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जिस दिन आपकी बेटी पैदा हुई थी, आपका सबसे बड़ा सपना क्या था? कि वो हमेशा आपके पास रहे या फिर इतनी स्ट्रांग बने कि अपने सपने वो जाके बाहर पूरे कर सके। आज जो हो रहा है वो उसी सपने का नेक्स्ट चैप्टर है, और ये बात तो शायद आपको भी पता ही होगी। एंड यस, उस चैप्टर में थोड़ी खुशी है तो काफी सारा सर्वाइवल भी, राइट? दोनों फीलिंग्स एक साथ एग्जिस्ट करती है। अब शायद वो वक्त आ गया है कि आप खुद से फिर से मिले। वो कौन सी चीज थी जो आपको पसंद थी, वो हॉबी जो बाद में कहते कहते रह गई, वो दोस्त जिनको कॉल करना हमेशा पोस्टपोन होता रहा, वो जगह है जहां

0: पे आप जाना चाहती थी, ट्रैवल करना चाहती थी। जिंदगी का ये फेज पनिशमेंट नहीं है, ये एक इनविटेशन है, कह सकते हैं अपने आप को दोबारा डिस्कवर करने का ये मौका है, और इसे हाथ से मत जाने दीजिए। एंड आपकी बेटी जो आज भी आपकी उनको जरूरत है, बट बस पहले रोज होती थी, अब वो वीडियो कॉल और फोन कॉल्स पे होगी, पहले होमवर्क के लिए होती थी, अब लाइफ के डिसीजंस के लिए होती थी। रोल बदला है, रिश्ता नहीं बदला है। सो आज की डेट में खुद को ये मत कहिए कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। मे बी यू कैन से समथिंग लाइक दिस दैट मैंने अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाया है कि अब वो खुद से उड़ सकती है, और शायद अब थोड़ा सा उड़ना आप भी डिजर्व करती हैं। That's what I feel. And on that note, I think ये गाना बहुत ही ज़्यादा feel good लगता है।
1: सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे।
0: I hope ये गाना सुनते हुए, of course आप अपनी बेटी को याद रखें, and एक चेहरे पे आपके smile जरूर रहे। सुनते रहिए Dear Masti, दिल से on Radio Masti 24/7 Live।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वाओ, ये अगला लेटर तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट, बिकॉज मैंने खुद भी काफी सारे लोगों के साथ जो है मेरी तूतू मैं हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। आई टेल यू व्हाट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतरा यहां पर फिलहाल आपके साथ, क्योंकि हम यहां पे डियर मस्ती यानी कि आपके वो स्ट्रेंजर वाले रेडियो वाले दोस्त हैं जो आपको सुनते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे वो कुछ भी आप हमसे शेयर करना चाहते हो, एंड देन ऑफ कोर्स वी काइंड ऑफ गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सेम। वेल भाई, किस किस के घर में ये बताइए इस बात पे झगड़ा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हमेशा ही फोन पे क्यों चिपके रहते हो, है ना। एंड समटाइम्स आई डू टेल पीपल, यू नो देयर इज एन ऐप कॉल्ड रेस्पेक्ट, राइट, आई होप यू कैन डाउनलोड इट, बिकॉज आप जब किसी के साथ बाहर जाते हो वक्त बताने के लिए, मुझे लगता है कि व्हाई डू यू हैव टू पिक अप दैट फोन, राइट। नाउ दैट्स कंप्लीटली मी, बट लेट्स रीड द लेटर। डियर मस्ती, माई हस्बैंड इज फिजिकली एट होम बट मेंटली हमेशा उनका फोन जो है उसी पे लगे रहते हैं, डिनर हो, वीकेंड्स हो या फिर वेकेशंस हो, देयर इज ऑलवेज अ स्क्रीन बिटवीन अस। Am I overthinking or is this something I should seriously talk about? सबसे पहले तो माई डियर लिसनर, अगर आप ये फील कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वैलिड फीलिंग है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम फोन नहीं होता है, प्रॉब्लम वो फीलिंग होती है जिस इंसान के साथ हम हर जगह पे यार एक घर शेयर कर रहे हैं, उसके साथ हम मोमेंट्स शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑनेस्टली रियली आजकल बहुत सारे कपल्स इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक सोफा पे है, एक वेकेशन पे है, लेकिन दोनों अलग अलग स्क्रीन्स अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस में जैसे कैसे हो या डिनर खा लिया क्या, बस उतना ही लिमिटेड सा रह जाता है। सवाल ये है कि क्या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते, just giving you like all kind of perspectives on this. कभी कभी लोग ना stress, workload, habit या सिर्फ mindless scrolling में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि उन्हें खुद भी realize नहीं होता कि वो emotionally unavailable लगने लगे हैं। So इसीलिए पहला step जो है वो मुझे ऐसा लगता है confrontation नहीं है, conversation है, और वो भी उस वक्त नहीं जब वो फोन यूज कर रहे हो, एक काम सा मोमेंट। और उनसे ये मत कहिए कि तुम हमेशा फोन पे क्यों रहते हो, क्योंकि क्या होता है कि बड़ा डिफेंसिव फील करने लगता है अगला बंदा जो जिससे भी आप ये कह रहे हो, उसकी जगह मे बी यू कैन से दैट आई फील लेस ऑफ यू अराउंड मी, तुम्हारी कमी महसूस होती है इवन व्हेन यू आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। सो देयर इज नो ब्लेम इन दिस सेंटेंस, इट्स जस्ट हाउ यू आर फीलिंग। और फिर शायद मिलकर एक छोटा सा रूल बना सकते हैं कि डिनर टेबल पे नो फोन्स, या फिर 20 मिनट की इवनिंग वॉक पे नो फोन्स, या फिर यू नो वीकेंड कॉफी यू कैन हैव

together, but without the phones, right? रिलेशनशिप को बचाने के लिए कभी कभी बड़े जेस्चर्स नहीं, छोटी सी कंसिस्टेंट हैबिट्स ही काफी होती हैं। और एक बात और, अगर आपको कनेक्शन की कमी महसूस हो रही है तो उस फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो बात करिए, प्यार से करिए, जल्दी करिए, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन के उस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये है डियर मस्ती, दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

bass is heavy. Jumbo.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: मैं आपसे पता है आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी, लेकिन बात करते करते भूल गई कि क्या बात करने वाली थी। होता है, इट्स नॉर्मल यार, और क्या। अरे अब मैं इस बात की भी चिंता करूंगी कि मैं आपसे क्या बात करने वाली थी, तब तो हो गया यार। बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ बनी हुई है, एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो बातें जो

0: आप भूल चुके हैं और आप उन्हें याद भी नहीं करना चाहते, तो वो ना याद आए। खैर, इन छोटी छोटी बातों में मेरे हाथों में एक खत आ चुका है जिसमें पता है क्या लिखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे। चलिए लेटर पढ़ती हूँ जिन्होंने मुझे भेजा है। ये हाय डियर मस्ती दिल से, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे संग क्या चल रहा है। मैं अपने टाइम का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं धीरे धीरे ना भुलक्कड़ बनता जा रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगी, परसों मैंने किसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल पर सेव किया था और आज वो दिन है जब मैं उसे कॉल करना चाहता हूँ पर मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। अब मैं उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट से नाम कैसे निकालूं और उसे कैसे कॉन्टैक्ट करूं? ये सब मेरे संग क्या चल रहा है? देखो, ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, मैं आपको बता रही थी ना, राइट? सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको बता दूं, आप ना बहुत कुछ सोच रहे हो एक साथ। हाँ, सच्ची बता रही हूँ। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक घर का, बाहर का, दोस्तों का, इधर का, उधर का, सोशल मीडिया का, इतना सारा एग्जर्शन लेकर एक ही दिमाग के अंदर फीड कर रहे हो, तो ऐसा होगा, भुलक्कड़ हो जाओगे आप। और ये अभी नया ट्रेंड भी चल रहा है जिसमें हम सब भुलक्कड़ हो चुके हैं। सो आपको करना क्या है, एक टू डू लिस्ट बना रही है और उसमें अपना सारा काम लिखते जाना है और धीरे धीरे उसे टिक ऑफ करते जाना है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा डीलोड करना शुरू कीजिए, राइट? और हाँ, अगली बार से किसी का नंबर लेना ना तो उसके आगे हल्की सी पहचान डाल देना कि वो आपका क्रश है, वो आपका कुछ और है, समथिंग लाइक दैट, कुछ की नोट होना चाहिए। चलिए, आपके जीने के नाम एक गाना।
1: जीने लगा हूं पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम मरने लगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने कर रहे हैं आपका इंतजार रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, आरजे पर आपके साथ।
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Now, this one thing I'm sure that you are going to relate with that because I can definitely. भाई जो सिंगापुर में रहता है तो ये सवाल हम कभी ना कभी अपने आप से पूछते ही है कि प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं, प्यार का प्यार नहीं मिल रहा। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतरा आपके साथ। यहाँ पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से, यस हमारा वो शो जिसका एक ही इंटेंशन है, जस्ट टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर ईच वन ऑफ अस, जहां पर हम अपने दिल की बात जो है खुलकर कर पाए। ऑफ कोर्स ये जो चिट्ठियां हम पढ़ते हैं आपको तो पता ही है दैट इसमें हम कोई नाम नहीं लेते हैं, हम आपको डियर लिसनर कहते हैं, आप हमको डियर मस्ती बुलाते हैं। बस इस शो के लिए हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है एंड इट हैज बीन वर्किंग आउट ब्यूटिफुली, वी नो दैट रियली वेल। कमिंग बैक टू ये अपनी अगली चिट्ठी जो कि इसी बारे में है कि डियर मस्ती, हम पिछले 12 साल से सिंगापुर में हैं बट अभी तक पीआर नहीं मिला। बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब समझ नहीं आ रहा फ्यूचर यही प्लान करें या किसी और कंट्री में। एवरी फ्यू मंथ्स वी स्टार्ट डिस्कसिंग मूविंग बट नो डिसीजन फील्स राइट, क्या करें। मेरा भी हो चुका है कई बार रिजेक्ट, अभी तक नहीं मिला। सो दैट इज व्हाई आई सेड दैट आई कंप्लीटली गेट यू व्हेन यू से दैट, बिकॉज यू नो विथ while we are preparing for all the documents and everything, you know, अंदर एक छोटी सी होप होती है कि बस इस बार क्या पता शायद इस बार, and जब नहीं आता है desired result, दिल भी थोड़ा सा टूट सा जाता है। But well, that has also taught me something, and मैं तो यही सोचती हूँ कि जब इस तरह के downfalls या इस तरह की चीजें downside में आती है, it always teaches us something, there's always a lesson behind it, so we need to learn and keep moving forward. But let me come back and then give you a proper perspective of mine on this. So stay tuned to Radio Masti 24/7 Live. Gaane enjoy kariye and wapas aaiye, sunte rahiye Dear Masti Dil Se. I will be back with the jawab.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। यहाँ पे चल रहा है डियर मस्ती दिल से। सो वेल, अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने एक चिट्ठी पढ़ी एंड कुछ लोगों ने मुझे लिखकर भी यहाँ पर भेजा कि हंसरा यू नो दैट राइट, इट्स हम सभी की कहानी है ना। यस आई नो दैट। कहानी और चिट्ठी कुछ इस बारे में थी दैट पिछले 12 साल से ये सिंगापुर में है, पीआर ट्राई किया बट अभी तक नहीं मिला। ऑफ कोर्स बच्चे उनके बड़े हो गए हैं एंड नाउ ऑफ कोर्स दे हैव टू प्लान कि क्या करना है, यहीं रहना है, दूसरे कंट्री में सेटल होना है। डिस्कशन शुरू होता है बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करें। सो सबसे पहले जो ये अनसर्टेनिटी आप फील कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। ओके, वी ऑल हैव फेल्ट दिस, क्योंकि 12 साल का ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। 12 साल में एक सिटी सिर्फ एड्रेस नहीं रहती, वो मेमोरीज बन जाती हैं, दोस्त बन जाते हैं, फेवरेट आपकी कॉफी शॉप होगी, फेवरेट पार्क होंगे, बच्चों का स्कूल, उनका रूटीन, सब मिलकर घर जैसा फील करने लगता है। और फिर जब फ्यूचर क्लियर नहीं होता तो इंसान दो जगह अटक सा जाता है, एक पैर प्रेजेंट में और एक पैर फ्यूचर में। एंड बिलीव मी, बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है ये। लेकिन शायद आपके लेटर में एक इंटरेस्टिंग क्लू भी है। आपने लिखा, हर कुछ महीनों में हम मूव करने की बात करते हैं लेकिन कोई डिसीजन सही नहीं लगता। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें आंसर नहीं पता, प्रॉब्लम ये होती है कि हम सर्टेनिटी ढूंढ रहे होते हैं और लाइफ के कुछ डिसीजंस सर्टेनिटी के साथ आते ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन के साथ आते हैं। तो शायद मे बी यू कैन आस्क समथिंग लाइक दिस टू योरसेल्फ दैट पीआर मिले या ना मिले, आपके फैमिली के लिए टॉप 3 प्रायोरिटीज जो है वो क्या है? बच्चों की एजुकेशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ, क्लोजर टू फैमिली, लाइफस्टाइल। जब प्रायोरिटीज जो है ना क्लियर होती हैं, डिसीजंस थोड़े इजियर हो जाते हैं लेने के लिए। कभी कभी ना हम इतना ज्यादा वेट करते रहते हैं कि कोई सिस्टम, कोई अप्रूवल या कोई आउटकम हमारे लिए डिसाइड करे कि हम अपनी पावर भूल जाते हैं। सी पीआर इज वन फैक्टर, लेकिन पूरी आइडेंटिटी तो नहीं है ना वो हमारी, पूरा फ्यूचर भी नहीं है। आपका फ्यूचर जो है आपके वैल्यूज, आपके गोल्स और आपके चॉइसेस भी उतना ही डिसाइड करेंगे। और अगर आज आंसर नहीं मिल रहा है तो खुद को फोर्स करना भी सही नहीं है। सो यू नो, लाइफ को थोड़ा स्मॉलर पीसेस में देखिए, शायद क्लैरिटी भी वहीं मिल जाए। एंड हर क्रॉसरोड्स पे खड़े लोग लॉस्ट नहीं होते, दैट्स व्हाट आई वुड से। कुछ लोग बस केयरफुली चूज कर रहे होते हैं कि उन्हें किस रास्ते पे चलना है। एंड दैट्स व्हाट यू नो इवन आई हैव बीन डूइंग आफ्टर गेटिंग सो मेनी रिजेक्शंस फ्रॉम पीआर। या ईदर यू ट्राई और यू डिसाइड or you just kind of have a little bit of patience as well, because jaise hi aapne apni priority set kar li aapka jawab bhi utna hi clear nazar aane lagega. Upsets sunte rahiye dear masti dil se.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you Tushahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
6: All right, इस घंटे के खत्म होने से पहले ही मैंने कहा अरे भाई इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ मुझे भी बुला लो यहाँ पर. It is Dear Masti दिल से. Dear Masti दिल से. Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. देखिए ये अनजाना इंसान इस समय मैं हूँ जो आपको दुनिया से शायद ज्यादा बेहतर समझ रहा है. अगली मेरी चिट्ठी भी फ्रेंडशिप के बारे में है. ओह माय गॉड, लगता है आज दोस्त कुछ ज्यादा ही परेशान है. तो आई हैव अ फ्रेंडशिप सिचुएशन, ऐसा लिखते हैं ये, दैट हैज बीन बॉदरिंग मी फॉर सम टाइम एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई एम ओवरथिंकिंग. कुछ साल पहले एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया मुझे टू हर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. बहुत अच्छा ग्रुप है एंड ओवर टाइम मैं भी बहुत उनमें घुल मिल गई हूँ. नेचुरली एज इट हैपन्स, कुछ लोगों के साथ मैं ज्यादा क्लोज हो गई एंड दूसरों के साथ भी इंडिविजुअल फ्रेंडशिप हो गई है. लेकिन अब मैंने कुछ नोटिस किया है, एक पैटर्न. जब भी मैं किसी के साथ ज्यादा क्लोज होती हूँ तो मेरी जो ओरिजिनल फ्रेंड है वो डिस्टेंट हो जाती है, मूडी हो जाती है, सार्केस्टिक भी होती है समटाइम्स. कभी कभी एक कॉमेंट आता है जैसे कि एक जोक है लेकिन बड़ा ही हैवी होता है. समटाइम्स इट्स कोल्ड बिहेवियर. समटाइम्स वो अपने आप को अलग ही कर लेती है एंड एक्ट्स अनोयड फॉर नो ऑब्वियस रीजन. पहले मुझे लगा कि मैं इमेजिन कर रही हूँ लेकिन इट हैज हैपेंड इनफ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर मी टू नोटिस अ कनेक्शन. सबसे स्ट्रेंज बात यह है दैट शी नेवर सेज एनीथिंग डायरेक्टली. कभी कहा नहीं है कि वो परेशान है लेकिन देयर इज अ टेंशन एंड आई कैन फील इट. मैंने हमेशा इग्नोर किया क्योंकि मुझे ड्रामा नहीं चाहिए. आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस ग्रुप में इन द फर्स्ट प्लेस. एंड कभी कभी तो आई फील गिल्टी फॉर बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स विद अदर्स एज इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. इज इट पॉसिबल कि वो पोजेसिव है, इनसिक्योर है या मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ रही हूँ इस पूरी कहानी में. एंड इफ दिस कंटिन्यूज शुड आई ब्रिंग इट अप विद हर और जस्ट कैरी ऑन एंड लेट हर डील विद हर ओन फीलिंग्स. क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग सी बात. एंड येट अगेन मैं यही कहूँगी, आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, लेकिन सीरियसली समथिंग विच अ लॉट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड और आर एक्सपीरियंसिंग. आई एम श्योर मेनी ऑफ आर लिसनर्स कैन रिलेट टू दिस. तो चलिए ये वाला जो अगला गाना है ना वो टोटली यारों के बारे में है. समझ गए ना आप के की बात करती हूँ. वो सुन रहे हैं और उसके बाद में वापस आके मैं आपको बताती हूँ अगले घंटे कि भाई आपको क्या करना चाहिए. This is Renuka. Stay tuned.

0: नमस्कार, हमारे आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। जी हाँ, चल रहा है आपका और हमारा बड़ा ही स्पेशल शो जिसका नाम है डियर मस्ती दिल से। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है, और इस शो में एक अनजाना इंसान नहीं, तीन तीन अनजाने इंसान जो आपको बेहतर समझते हैं। मैं हूं रेणुका और मेरे साथ हैं आरजे नूपुर एंड आरजे अंथरा। कुछ देर पहले, जी हाँ, पिछले घंटे के आखिरी मिनट्स पे हम बात कर रहे थे अबाउट अ फ्रेंडशिप जो कि इनसिक्योर दिखती है या जेलस दिखती है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने एक ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया और फिर उस ग्रुप में जब दूसरा इंसान अच्छे से घुल मिल गया तो वो ओरिजिनल फ्रेंड ज़रा डिस्टेंट होती जा रही है। सो उन्होंने क्या करें ऐसे सिचुएशन में, क्या करें सीरियसली। बात ये होती है कि एक ह्यूमन सिचुएशन है और हम में से मोस्टली लोगों ने एक्सपीरियंस किया है सम वर्जन ऑफ इट, या तो लेफ्ट आउट फील करना या पर्सन कॉट इन द मिडल। सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगी कि फ्रेंडशिप ओनरशिप नहीं होती है। अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है टू अ ग्रुप, डजंट मीन दे गेट एक्सक्लूसिव राइट्स टू योर फ्रेंडशिप्स विद इन दैट ग्रुप। रिलेशनशिप्स नेचुरली डेवलप होती हैं और कंप्लीटली नॉर्मल होता है टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। एट द सेम टाइम आप अपनी फ्रेंड की पर्सपेक्टिव से देखिए, उसने आपको इंट्रोड्यूस किया, जी हाँ, और उसके बाद में अनएक्सपेक्टेडली उसके अंदर फीलिंग आ गई इनसिक्योरिटी की, नॉट बिकॉज शी इज अ बैड पर्सन, बट बिकॉज उसको एक फियर है ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड, फॉरगॉटन और बिकमिंग लेस इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो अब भाई जस्टिफाई तो नहीं कर सकते सार्कैज़म या मूड्स दिखाना या पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि दिस इज़ वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। आपके लिए छोटा सा एक रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई अपने आप को पहली बात तो कहानियाँ मत बताइए कि वो जेलस है या पोजेसिव है, वो ज़रा गड़बड़ हो जाएगी। आप सिर्फ एक काम कीजिए, जेंटल सी कॉन्वर्सेशन कीजिए उसके साथ, नॉट एन एक्यूजेशन, समथिंग लाइक आई हैव नोटिस्ड अ बिट ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन अस लेटली, आई होप एवरीथिंग इज ओके। That opens the door without putting her on the defensive. अगर उसको बात नहीं करनी है तो आप इतना ही कर सकते हैं, just let her be, okay? You cannot manage someone else's emotions for them. Continue being kind, continue being inclusive, continue valuing your friendship with her, but do not shrink your connections with others just to keep someone else comfortable. Healthy friendships में हमेशा एक growth होती है, हमें कभी छोटा बनने के लिए या रिस्ट्रिक्टेड रहने के लिए नहीं होती है। सो इसीलिए बी माइंडफुल ऑफ द फीलिंग्स बट डोंट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग्स शी हैज नेवर कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो भाई अगला गाना सुनते हैं, बहुत ही बढ़िया सा है, इतना बता दूं, ये है डियर मस्ती दिल से, जहां कभी कभी द बिगेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ कम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट शिफ्ट्स इन रिलेशनशिप्स। स्टे ट्यून्ड,
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, the only local connect with global expat Indians anytime anywhere।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

यू नो व्हाट, ऐसा होता है कुछ ग्रजेस मन में घर कर जाती है और वो फ्लैशबैक बनकर सामने आ जाती है। आपको भी आती है ना? अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट में या कलर्ड में? अगर ब्लैक एंड व्हाइट में तो बात थोड़ी पुरानी है। बिल्कुल, मैं आज पर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, हम धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं ना, तो हम ये तो मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स का डिसीजन सबसे सही डिसीजन होता है, लेकिन कुछ तो दिक्कत आती है। चलो, मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें क्या लिखा है बताती हूँ कि हाय डियर मस्ती दिल से, मैं अपने पेरेंट्स के वैसे तो बहुत करीब हूँ और नहीं भी हूँ। अभी रिसेंटली जो लॉन्ग वीकेंड आया था उस पर मैं अपने पेरेंट्स के घर जाने का सोच भी रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरे ही पेरेंट्स के घर विजिट करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट अकेले रहो तो ज्यादा खुश रहो, और वहां अगर जाती भी हूँ तो मेरी थोड़ी ही बातों के बाद कहा सुनी हो जाती और मैं वापस आ जाती हूँ। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत अभी की नहीं है, आपकी दिक्कत बहुत पुरानी है। हाँ, जैसा मैंने आपको इनिशियली बताना भी चाहा था कि कुछ बातें, कुछ फ्लैशबैक्स, कुछ जो चीजों को ठेस लग जाती है ना, दिल को ठेस लग जाती है, वो चीजें हमारी इनिशियल लाइफ में हो चुकी होती है, और वो ग्रजेस हम कैरी फॉरवर्ड करते करते करते करते करते करते करते अपने एडल्टहुड तक ले आते हैं, और हम अपने पेरेंट्स से वैसे ही डील करने लगते हैं। तो उन पुरानी बातों पर पहले मिट्टी पाइए, उन फ्लैशबैक को मिटाइए, और फिर आप उनसे मिलने जाइए। आप हमेशा फील गुड करोगे, समझे आप? आहिस्ता, आहिस्ता, ये दिल यही खो गया। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे ही प्यारे गाने आपकी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन होते जा रहे हैं डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: सिंगापुर, बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
5: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: Josh made a कुछ काम बेवजह कर लेने चाहिए, मतलब अगर बॉस ने टोका नहीं है, घर वालों ने डांटा नहीं है, तो भी कर लेना चाहिए खुद की नजरों में ऊपर उठने के लिए। सो डेफिनेटली आरजे अनुपम डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। और आपको पता है आज ऑफिस में कोई नहीं है, ठीक है, ना बॉस, ना कलीग्स, ना कुछ, पता नहीं ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफिस में नजर आ रहा है। बट मजाल है कि मैं अपने काम को लेकर जरा भी 19-20 कर दूं। नहीं, आई एम सीरियस अंदर से, क्योंकि मैं खुश हूँ इन चीजों को लेकर। हाँ, तो कई बार होता है कि हम रिश्ते जो हैं वो सामने सामने तो खूब निभा लेते हैं, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, लेकिन जैसे ही चीजें पीछे की तरफ जाती है, मतलब वो शख्स आपके सामने नहीं है, आउट ऑफ टाउन है या दूर है, तो हम थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना चाहिए नहीं, नहीं ना। अगर आप एक जगह 100% दोगे तभी तो आप कहीं और कुछ देने के लिए रहोगे नहीं। लेकिन अगर आपने एक जगह एक ही इंसान के साथ अपना 100% नहीं दिया तो आप थोड़े बिखर जाओगे 30, 40, 50, 60 में, जो आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्शन देगा। और जब ना पर्सनल लाइफ खराब होती है ना, तो उसका बहुत बुरा असर प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। सच्ची बता रही हूँ, मतलब इन दोनों में से अगर किसी का वेटेज बहुत ज्यादा है तो वो है पर्सनल लाइफ। अगर पर्सनल लाइफ शॉर्ट चल रही होती है और प्रोफेशनली हम उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे होते हैं ना, तो भी काम चल जाता है। सो थिंक अबाउट इट, एंड जैसे ही आप इस बात की गहराई को समझ जाओ तो मुझे याद कर लेना, यानी अपनी आर्ट्स।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. यस, आपकी अंतरा इज बैक हियर विद अपनी अगली चिट्ठी जो ये कहती है कि डियर मस्ती, everyone around me seems to be buying homes, getting promotions, traveling and achieving big goals. Meanwhile, I feel like I'm standing at the same place. I know comparison isn't healthy, but it's becoming difficult not to compare. Dear listener, पहले तो whoever has written this, let me tell you, you are not alone. ये feeling जो है ना, ये काफी काफी कॉमन है, स्पेशली जब हम ये सोशल मीडिया या अपने सर्कल में सिर्फ लोगों के माइलस्टोन्स जो है ना वो देखते जरूर रहते हैं, क्योंकि वो पोस्ट ही सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, बाकी का उसके बिहाइंड द सीन आपको शायद मोस्ट ऑफ द टाइम अंदाजा ही नहीं है. किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा था कि अगर आप एक गार्डन को देखें, ठीक है, तो उसमें बहुत तरह तरह के फूल जो है आपको नजर आएंगे, एंड एवरी सिंगल फ्लावर हैज और टेक्स इट्स ओन टाइम टू ब्लूम. हर फूल की अपनी एक जर्नी होती है, तो आप एक फ्लावर को देख के ये नहीं बोल सकते बिकॉज दैट हैज ब्लूम्ड बाकी सारे जो है वो नहीं करेंगे. सब अपने समय पे जरूर ब्लूम करते हैं बिकॉज दैट इज हाउ द गार्डन लुक्स ब्यूटिफुल, राइट. कंपैरिजन डेफिनेटली आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि गलत नहीं होता है, बट ह्यूमन ब्रेन जो है ना नेचुरली कंपेयर करता है. प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी लाइफ के struggles, builds, doubts, responsibilities compare करते हैं किसी और के highlight reel से. कई सारे therapists जो है वो ये कहते हैं कि comparison को stop करने से पहले उसका pattern समझो. In fact, Dear Zindagi movie में भी जो है there's a dialogue which talks about the pattern कि ask yourself कि मैं किससे compare कर रही हूँ या कर रहा हूँ, career wise, money wise, marriage wise, house, travel, किस हिसाब से, और ये comparison मुझे inspire कर रहा है या अंदर से it's just not doing good to you. And if it is not doing good to you, then you have to take a pause, क्योंकि किसी का promotion आपका failure थोड़ी ना है, किसी का घर आपकी दिले नहीं है, किसी की हॉलिडे आपकी लाइफ बोरिंग है, ऐसा तो कुछ प्रूफ नहीं कर रहा, राइट. प्रैक्टिकल स्टेप, अपना स्कोर बोर्ड खुद बनाओ, सोसाइटी का नहीं. इस महीने में किस चीज में बेटर हुए, लाइक हेल्थ वाइज, पेरेंटिंग वाइज, सेविंग्स वाइज, जस्ट कीप वॉटरिंग योर ओन साइड ऑफ द ग्रास एंड लेट इट ग्रो ग्रीनर एंड ग्रीनर एंड फोकस ऑन दैट. The moment we start doing that, rest everything else falls in place. Yeah, that's what I feel about it. I hope this helps you as well. Just keep watering your own side of the grass. Don't water too much, but take care of that.

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Dear Musty, Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
4: और बस इसी के साथ आज का ये डियर मस्ती दिल से का सफर और वक्त यही खत्म होता है. आज के सारे लेटर्स सुनते हुए एक बात ना बार बार दिल में आ रही थी कि मे बी हम सब की कहानियां अलग हैं. किसी को बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है, किसी को रिलेशनशिप में डिस्टेंस महसूस हो रहा है, कोई कंपैरिजन से स्ट्रगल कर रहा है, कोई लाइफ के नए फेज में खुद को दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, We all are humans, right? हम सब फील करते हैं, हम सब कभी ना कभी confused होते हैं और हम सब बस ये जानना चाहते हैं कि जो हम फील कर रहे हैं क्या वो नॉर्मल है. और शायद आज की रात का और इस एपिसोड का आंसर कुछ यही है कि हाँ, ये नॉर्मल है. इट इज. लाइफ में हर सवाल का परफेक्ट जवाब नहीं होता है, हर डिसीजन के साथ सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं आती है. लेकिन जब तक हम सोच रहे हैं, हम सीख रहे हैं, फील कर रहे हैं और एक छोटा सा स्टेप जो है आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तब तक हम ठीक हैं. मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सब लिसनर्स को जो हमें लेटर्स लिखते हैं. आप जब अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं तो वो सिर्फ एक मैसेज नहीं होता है, दैट्स ट्रस्ट एंड वी सिंसियरली वैल्यू दैट. थैंक यू उन सभी को भी जो कमेंट्स, मैसेजेस और अपने थॉट्स हम तक पहुंचाते हैं. कभी कभी आपके पर्सपेक्टिव्स भी किसी और लिसनर के लिए काइंड ऑफ रोशनी बन जाते हैं. अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री, ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. आपकी आइडेंटिटी हम हमेशा कंप्लीटली अनोनमस रखेंगे. हम सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, आपका लेटर पढ़ेंगे और दिल से अपने थॉट्स शेयर करेंगे उस बारे में. उम्मीद है आज का ये एपिसोड यू हैव लाइक्ड इट. हम ऑफ कोर्स वी विल मीट नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ, नए लेटर्स के साथ और दिल की कुछ और बातों के साथ. तब तक यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हमें इजाजत दीजिए. गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं, और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज, एंड दिस इज द साउंड ऑफ आवर नेशन. होप यू गाइस लाइक इट, एंड दिस इज व्हाट मेक्स मी लव माय जिंदगी. सो ऑन दैट नोट, लेट्स

0: देखो देखो वहाँ क्या,
1: सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूं यादों का कारवां, जो बनाएगा आपके पूरे दिन को एकदम फ्रेश एंड फ्रेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यादों का कारवां। आज के कारवां की शुरुआत हम करेंगे देखा है पहली बार गाने से, क्योंकि ये जो कमाल का गाना है फिल्म साजन का, ये मुझे बहुत पसंद है। और खास तौर से जो इसका इंटरल्यूड म्यूजिक है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। और ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था तो इसी जो इंटरल्यूड की वजह से ये बार बार सुना, और इतना सुना कि ये गाना याद हो गया था। फिल्म थी साजन और बाय गॉड क्या फिल्म थी। फिल्म ने धूम मचा दी थी 1991 में। इस फिल्म में लंबे लंबे बालों वाले संजय दत्त थे और नॉटी नॉटी सल्लू भैया थे। और उफ हाय, पूरी फिल्म में बला की खूबसूरत नजर आई थी माधुरी दीक्षित। तीन सुपरस्टार एक साथ और म्यूजिक पूछे ही मत। 9 गाने थे फिल्म में जिसमें एक दो बार था और हर गाना सुपर डुपर हिट था। फिल्म बनाई थी लॉरेंस डिसूजा ने और इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन वो इसी फिल्म से जाने जाते हैं। फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, शायद आपने देखी होगी ये फिल्म, तो मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, आप मुझे कहानी सुना देंगे उल्टा। लेकिन नहीं देखी है आपने तो देख जरूर लीजिएगा, 90s के फील के लिए इससे बेहतर फिल्म नहीं है। बाय गॉड एक बार जरूर देखिएगा। अच्छा, कुछ मजेदार बातें आपको बताता हूं मैं। जैसे पहले ये फिल्म आमिर खान को ऑफर हुई थी, संजू बाबा वाला रोल मिल रहा था उन्हें। सोचे सोचे कैसे लगते वो साजन, हा? वैसे तो वो भी अच्छे लगते, लेकिन संजू बाबा ने जो धाक जमाई ना, मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कोई और ले सकता था। आमिर को फिल्म पसंद आई भी थी लेकिन रोल से वो कन्विंस नहीं हो पाए थे। अच्छा एक और बात, फिल्म सिर्फ 36 दिन में बनकर पूरी हो गई थी, 36 days में। अजीब है ना, इतने बड़े बड़े स्टार्स और सिर्फ 36 दिन में पिक्चर पूरी। और बताऊं आपको, उस जमाने में फिल्में ना 25 से 50 हफ्ते तक चलती थी। ये भी चली थी। और हाँ, माधुरी वाला रोल भी ना पहले माधुरी को नहीं मिला था, आयशा जुल्का को ऑफर किया गया था। वही पहला नशा पहला खुमार वाली आयशा। लेकिन उन्हें शूटिंग के पहले दिन ही तेज बुखार आ गया और फिल्म में हो गई माधुरी जी की एंट्री। इस तरह से फिल्म की ये कास्ट बनी और ये फिल्म कमाल के गानों के लिए हमेशा याद की जाएगी। आज भी इसके गाने बड़े अच्छे लगते हैं, कसम से याद कीजिए। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, या फिर मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, ये वाला मुझे बहुत पसंद है कुमार सानू की आवाज में। आपकी भी इच्छा होगी ना एल्बम ढूंढने की, पर इसे आप बाद में सुनिएगा, पहले आप ये गाने सुन लीजिए। इस फिल्म के और उस दौर के कुछ और गानों के साथ शुरू कर लेते हैं यादों का कारवां।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: दिल है कि मानता नहीं, आपसे बार बार मिलने चला आता है। मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर ऑफ कोर्स। तो ये जो फिल्म है दिल है कि मानता नहीं, उसी का हम जिक्र करेंगे, उसी की बात करने वाले हैं। इस फिल्म का यही टाइटल ट्रैक था, दिल है कि मानता नहीं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपने महेश भट्ट साहब ने इसे बनाया। वैसे तो बड़ी संजीदा फिल्म है, वो हमेशा बनाते रहे, लेकिन ये फिल्म उन्होंने अपनी लाडली पूजा भट्ट के लिए बनाई थी और सच में खासी मजेदार रिफ्रेशिंग मूवी थी। ये फिल्म पूजा भट्ट की पहली बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी और फिल्म के गानों ने जमकर धूम मचाई थी। फिल्म का म्यूजिक उस समय हर फिल्म में धूम मचा रहे नदीम श्रवण ने दिया था और फिल्म में कुल 11 गाने थे और सारे के सारे सुपर डुपर हिट। गाने गाए थे अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और बाबला मेहता ने। फिल्म का प्लॉट हालांकि नया नहीं था, ये 1934 में आई एक हॉलीवुड फिल्म इट हैपेंड वन नाइट से लिया गया था, जिस पर राज कपूर नरगिस की क्लासिक चोरी चोरी भी बनी थी। फिल्म का प्लॉट भले ही नया नहीं था लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग था। अनुपम खेर की हेयर स्टाइल कमाल की थी और फिल्म के आखिर में बोला उनका डायलॉग आज भी लोगों को याद है, जिसमें वो अपनी ही बेटी को शादी के मंडप से भागने की सलाह दे देते हैं। फिल्म में आमिर खान एक प्रेस रिपोर्टर के रोल में, रघु उनका नाम था, रघु जेटली, और उनका गेटअप बड़ा कमाल का था, टोपी पहने रहते हैं पूरी फिल्म में। और ये जो कैब थी ये बड़ी मशहूर हो गई थी उस जमाने में, और ये कैब भी ऐसे ही नहीं थी, इस कैब को ढूंढने में घंटों लगाए गए थे। फिल्म में अनुपम खेर का लुक चंकी पांडे के फादर से मिलता जुलता था और हाँ, पापा महेश भट्ट ने पूजा को धमकी दे दी थी यदि उन्होंने लिप सिंकिंग नहीं की तो फिल्म से निकाल देंगे उनको। दरअसल पूजा को गानों में लिप सिंकिंग करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन पूजा ने भी कमिटमेंट दिखाया और क्या कमाल का काम किया। फिल्म भी जमकर चली और आज भी देखिए मूड फ्रेश कर देती है, एकदम ताजी हवा का झोंका टाइप की है फिल्म। तो ये फिल्म बहुत बेहतरीन थी और इससे जुड़ी यादें भी थी जो बहुत बेहतरीन थी। मुझे याद है मैंने ये फिल्म देखी थी इंडिया में, तो उस वक्त एक गाना था शुरू में, गालिया सांकली सोनियाची, बाबला मेहता की आवाज में गाना था, दीपक तिजोरी पर पिक्चराइज था। मछुआरे गाना गा रहे हैं क्योंकि वो लोग पूजा भट्ट को बचाते हैं, वहां ये गाना आता है। और ये गाना हालांकि इस एल्बम का वन ऑफ द बेस्ट गाना नहीं है, लेकिन लोगों में इतना क्रेज था इस फिल्म के गानों का कि इस गाने को सिनेमा हॉल में बार बार चलवाया गया, 3-4 बार, फिर पुलिस बुलवाई गई, तब जाकर फिल्म आगे बढ़ी। वरना लोग क्या करते थे कि जो प्रोजेक्शन विंडो होता ना उसके सामने खड़े हो जाते थे या वहां अपनी शर्ट लगा देते थे ताकि उनकी डिमांड सुनी जाए और फिल्म को रिवाइंड करके ये गाना सुनाया जाए, फिर से दिखाया जाए, और वो डांस करते थे साथ साथ। तो ये आलम था इसके म्यूजिक का। जब आपने फिल्म देखी थी तब आपके साथ क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, कौन से किस्से हैं जो आज भी आपको याद हैं, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल ये गाने आपके लिए।

वेलकम बैक, यादों का कारवां है ये और मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। 1991 की फिल्मों की बात करके 1992 की एक बेहतरीन फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर और इसका वो गाना पहला नशा पहला खुमार, क्या बात है। ये गाना आज भी वैलेंटाइंस डे पर इंडिया में तो जमकर चलता है। हालांकि इसके कवर वर्जन आ गए हैं, रिमिक्सेस बन गए हैं, लेकिन गाने की फीलिंग कमाल की है। आज भी सुनकर ही नहीं बल्कि देखकर भी कमाल लगता है गाना। आयशा जुल्का और आमिर खान पर पिक्चराइज है गाना। वैसे फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो जो जीता वही सिकंदर एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी जिसमें थी मैराथन साइकिल रेस और ढेर सारी मस्ती। फिल्म का प्लॉट बहुत ही अपीलिंग था। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों की राइवलरी दिखाई गई है इसमें। इतना अपीलिंग प्लॉट था जिसने फिल्म को उस साल की सबसे बड़ी हिट बना दिया था। फिल्म का म्यूजिक जतिन ललित ने दिया था जो बिल्कुल न्यू कमर थे और इस फिल्म के भी सारे गाने खूब चले। फिल्म के गाने लिखे थे वेटरन सॉन्ग राइटर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और नासिर हुसैन साहब थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर। फिल्म के गाने लिखे थे वेटरन सॉन्ग राइटर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और नासिर हुसैन साहब के वो परमानेंट सॉन्ग राइटर थे। नासिर हुसैन साहब की ये फिल्म थी। वैसे नासिर हुसैन साहब की फिल्मों में बहुत कुछ बदला लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी नहीं बदले। आपको पता है पहला नशा सॉन्ग की कोरियोग्राफी अपनी फराह खान ने की है। दरअसल फिल्म की कोरियोग्राफर सरोज खान इस गाने की शूटिंग पर नहीं आ सकी और फराह जो डायरेक्टर को असिस्ट कर रही थी उन्हें इस गाने की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी दे दी गई और बस तब से फराह की कोरियोग्राफी का नशा सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। ये पूरा गाना स्लो मोशन में पिक्चराइज है और बेहद खूबसूरत दिखता है। अच्छा होता क्या है कि स्लो मोशन में जब कुछ पिक्चराइज करते हैं तो फिल्म कैमरे की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो कैमरा ज्यादा फ्रेम कैप्चर करता है और जब इन ज्यादा फ्रेम्स को स्टैंडर्ड रेट पर दिखाया जाता है तो ये स्लो मोशन में नजर आता है। तो गाने के साथ ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब इसमें समस्या क्या आ रही थी कि गाने को लिप सिंक कैसे करें। तो फराह ने सलाह दी कि सारे एक्शन बहुत फास्ट फास्ट करने पड़ेंगे आपको, ये लिप जो है बड़े तेज तेज चलाने पड़ेंगे, जैसे पहला नशा पहला खुमार, मतलब तेज तेज गाएंगे तब जाकर ये स्लो मोशन में आपके लिप पर सिंक दिखाई देगा। तो इसकी शूटिंग में भी बड़ा मजा आया और कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये सोचकर देखिए। इतना रोमांटिक गाना है लेकिन उसको आप तेज तेज गा रहे हैं टेक्निकली करेक्ट करने के लिए, लेकिन एक्सप्रेशंस और इमोशंस जो आपके चेहरे पर आ रहे हैं वो वैसे ही प्यार के रहेंगे। बहुत डिफिकल्ट, मतलब सोचकर ही मुझे ऐसा लगता है कैसे किया होगा, लेकिन वो तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है ना आमिर खान, वो सब कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो। फिल्म में आमिर खान के बचपन का रोल उनके भांजे इमरान खान ने किया था। अरे भाई जाने तो या जाने ना में जो थे। अच्छा फिल्म के डायरेक्टर मंसूर खान ने फिल्म इतनी ज्यादा शूट कर ली थी कि एक दूसरी फिल्म भी उसमें से बन सकती थी, लेकिन फिल्म कमाल की है। आपकी कॉलेज लाइफ याद आ जाती है आपको और यादों का कारवां का तो मकसद ही है कि कुछ यादें आपकी ताजा की जाएं। हमारी फिल्मों के जरिए हम ताजा करेंगे और आप हमारे फेसबुक पेज पर आकर अपनी यादों के कारवां को आगे बढ़ाते रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यादों का कारवां विद समर ओनली ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

वेलकम बैक, मेरा नाम है जमर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। ये है यादों का कारवां और आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद सेंसुअस गाने की। नहीं, आज नहीं कर रहे, अभी करने वाले हैं। अगर एक लिस्ट बनाई जाए बेहद सेंसुअस गानों की, तो उनमें एक गाना है जो जरूर जरूर जरूर होगा और वो है धक धक करने लगा। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज ये गाना। ऑरेंज कलर का डिजाइनर आउटफिट और माधुरी दीक्षित की मोहक मुस्कान ने ऐसा समा बांधा कि आज भी ये गाना कहीं भी दिख जाए या सुनाई दे जाए तो कदम ठिठक जाते हैं। आपको बताऊं, मैं 1992 में आई इस फिल्म का नाम था पहले बड़ी बहू, लेकिन 60s टाइप का नाम लगाइए, इसलिए शायद बाद में इसे बेटा कर दिया गया। वैसे ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म एंगा चिन्ना रासा का रीमेक थी और माधुरी वाला रोल भी पहले श्रीदेवी को दिया गया था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने अनिल कपूर के साथ कई फिल्में कर ली, सो उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। वैसे ये धक धक सॉन्ग भी एक तेलुगु फिल्म से लिया गया था और उसमें थे श्रीदेवी और चिरंजीवी। खैर, फिल्म तो चली और खूब चली साहब। इंदर कुमार ने फिल्म बनाई जो आजकल पता नहीं क्यों मस्ती टाइप की फिल्में बना रहे हैं, या वो धमाल जो सीरीज है वो इंदर कुमार की है। अच्छा, पहले अरुणाई रानी वाला रोल भी वहीदा रहमान जी और माला सिन्हा के साथ शर्मिला टैगोर को भी ऑफर किया गया, लेकिन जब इन सब ने मना कर दिया कि ये तो नेगेटिव शेड वाला रोल है, तब ये अरुणा जी तक पहुंचा। वेल, ये 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे। तो ऐसी फिल्म के गाने नहीं सुने तो फिर क्या सुना। तो आइए गाने सुनते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहिए यादों का कारवां, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
5: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning!
6: वेलकम बैक, समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप एंजॉय कर रहे हैं यादों का कारवां। और ये काफिला आपके बगैर अधूरा है, ये कारवां आपके साथ ही पूरा हो सकता है। कुछ यादें आपकी, कुछ हम आपको याद करा रहे हैं हिंदी फिल्मों के जरिए, उनके बेहतरीन नगमों के जरिए। जुम्मा चुम्मा दे दे, ओए होए क्या सीन होता था ना भाई गॉड। काले रंग का कोट और लाल रंग का गमछा, देसी भाषा में उसे गमछा ही कहते हैं, गले में डाले अमिताभ बच्चन जैसे इस गाने की शुरुआत करते थे, सिनेमा हॉल में लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता था भैया। और पूरे गाने में जितना शोर स्क्रीन पर होता था उससे ज्यादा शोर थिएटर में होता था। इस गाने से जुड़ा बड़ा रोचक ऐसा यह है कि गाना ओरिजिनली रमेश सिप्पी साहब की फिल्म राम की सीता शाम की गीता के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें अमिताभ और श्रीदेवी का डबल रोल होना था। फिल्म बनी नहीं तो हम के डायरेक्टर मुकुल आनंद ने यह गाना अपनी फिल्म अग्निपथ के लिए ले लिया, जिसमें यह सॉन्ग अमिताभ और अर्चना पूरण सिंह पर फिल्माया जाना था। लेकिन मुकुल को लगा कि यार अग्निपथ में अमिताभ ऐसे गाने गाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे मुकुल ने ठीक ही सोचा था। अब आप ही बताइए, वो जय थी नाना चौहान जुम्मा चुम्मा गाता तो कैसा लगता, ए जुम्मा चुम्मा दे दे। वैसे ये गाना अल्टीमेटली हम में शिफ्ट हो गया और अमित जी किमी काटकर के साथ जुम्मा चुम्मा गाते हुए और करते हुए दिखे। एक किस्सा और हुआ, उसी साल संजू बाबा और माधुरी की थानेदार भी आई और उसके तम्मा तम्मा की धुन जुम्मा चुम्मा जैसी ही थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही गाने विदेशी सिंगर मोरीकांट के सॉन्ग तम्मा के रीमेक थे। अब ये सब चलता रहता भाई, अपने को तो सिर्फ मजा लेना चाहिए, नहीं और वो मिल रहा है। अब किधर से आया, क्यों आया, कौन लाया, इसे क्या करने का अपने को। और एक बार बताऊं आपको, फिल्म में गोविंदा भी थे और जब फिल्म साइन की गई तो वो उस समय ऑलरेडी 38 फिल्में कर रहे थे, पर अमित जी के साथ पहली बार रोल मिल रहा था, सो भाई ने छोड़ा नहीं ये रोल। फिल्म बहुत ही कमाल की है, फिल्म से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। टाइगर याद आ गया मुझे, टनना टनना टाइगर की ऐसी एंट्री होती है इस म्यूजिक के साथ, इंट्रो म्यूजिक के साथ। देखिए ना, जब हम पुरानी फिल्मों की बातें करते हैं तो कितनी सारी यादें चली आती हैं। ऐसी कुछ यादें आपके जहन में भी होंगी जब आपने हम देखी होगी, कहां देखी थी, कैसे देखी थी, किसके साथ देखी थी, और बंक मार कर देखी थी या फैमिली के साथ देखी थी। फैमिली के साथ देखी थी तो जुम्मा चुम्मा वाले गाने में आप क्या कर रहे थे, मतलब उस जमाने में तो बड़ा टैबू टाइप का था ना ये। खैर यादें आ गई होंगी आपको भी बहुत सारी, हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल ये गाने सुनते हैं।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवा विद समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। इमली का बूटा बेरी का बेर, इस फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ। नहीं, ये फिल्म नहीं, ये फिल्म का गाना है। शोमैन सुभाष भाई की फिल्म सौदागर का ये गाना है। वास्तव में ये बहुत ही बड़ी फिल्म थी। बीते दौर के दो बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब को एक बहुत बड़े अंतराल के बाद एक साथ पर्दे पर लाने का काम किया था सुभाष भाई ने। दोनों का अपना स्टाइल, अपना ही रंग और इन दोनों की मौजूदगी ने ही फिल्म को इतना बड़ा हिट बना दिया। इन दोनों ने सौदागर से 30 साल पहले फिल्म पैगाम में साथ काम किया था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ये मानती थी कि दोनों एक साथ कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि राजकुमार साहब का अखड़ मिजाज पूरी इंडस्ट्री जानती थी और दिलीप साहब तो दिलीप साहब ही। खैर, सुभाष घई साहब ने सबको गलत साबित कर दिया। फिल्म तो सुपर डुपर हिट होनी ही थी। हालांकि घई साहब को कई मुश्किलें भी आईं। जैसे एक रोचक किस्सा यह है कि फिल्म के सेट पर जब राजकुमार पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि दिलीप साहब को तो हरियाणवी टाइप की हिंदी बोलनी है और उन्हें सिंपल हिंदी में डायलॉग बोलने। बस राजकुमार साहब हो गए नाराज और सुभाष जी से बोले, जानी ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम अभी ये फिल्म छोड़ रहे हैं। बाद में सुभाष घई साहब ने उन्हें 2 घंटे तक समझाया, मनाया, सर फिल्म में आपका रोल एक खानदानी रईस का रोल है, वहीं दिलीप साहब एक किसान का रोल कर रहे हैं, इसलिए ये फर्क है, गांव के हैं वो। तब जाकर राजकुमार माने और फिल्म के पर्दे पर वीरू सिंह और राजेश्वर सिंह की धुआंधार डायलॉग बाजी उतर पाई। एक सीन मुझे इस फिल्म का बहुत बढ़िया लगता है जब दोनों एक नदी के दोनों ओर से डायलॉग बाजी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार और राजकुमार साहब की। इधर दिलीप कुमार साहब शराब पिए हुए होते हैं और कैसे इनेक्ट करते हैं वो कमाल है भाई, कमाल है, बता नहीं सकता हूँ मैं शब्दों में, वो तो देखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, इसी फिल्म से विवेक मुश्राण और मनीषा कोइराला की भी फिल्मों में एंट्री हुई और दोनों छा गए। हालांकि विवेक मुश्राण की पारी ज्यादा नहीं चली, थोड़ी सी फिल्में करने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। टीवी सीरियलों में नजर जरूर आए, आजकल भी किसी एक आध टीवी सीरियल में वो आते हैं, लेकिन मनीषा कोइराला अभी संजू में, संजू की मम्मी थी, नरगिस जी का रोल किया था उन्होंने। तो इस तरह से ये बेहतरीन सफर तब शुरू हुआ था। चलिए इन बेहतरीन गानों के साथ हम भी इस कारवां को आगे बढ़ा लेते हैं, इस सफर को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। सुनते रहेगा यादों का कारवां विद समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। एंड यू नो सिंगापुर का ओनली हिंदी रेडियो कौन सा है? यस यू गाइस राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जो हमेशा आपके साथ है 24 घंटे 7 दिन।

वेलकम बैक, समर के साथ हैं आप रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं यादों का कारवां। मैं जब इंडिया से सिंगापुर आया तो कई समंदर पार करके आया, लेकिन यह मोहतरमा कहती है कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। हाई किधर है भाई? नहीं कोई नहीं है मेरे साथ। फिल्म विश्वात्मा का ये गाना, पिक्चर जो थी ये ठीक ठाक थी, सेमी हिट थी, लेकिन गाना सुपर डुपर हिट हो गया। क्या चला ये गाना साहब, आज भी चलता है, रीमिक्स में भी खूब बजता है गाना। खूबसूरत गुड़िया सी दिखने वाली दिव्या भारती, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको इसी गाने ने फेमस बनाया था। आपको बताऊं कि हाल ही में बड़ी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने 1.5 करोड़ रुपए में ये गाना खरीदा है, क्योंकि वो अपनी पत्नी दिव्या भारती को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। ये गाना साजिद ने अपनी फिल्म किक में इस्तेमाल किया। किक में सलमान इस गाने पर डांस करते दिख रहे हैं और ये फिल्म विश्वात्मा का गाना है। और फिल्म बनाई थी त्रिदेव बनाने वाले राजीव राय ने। त्रिदेव याद है ना आपको, ओए ओए वाली फिल्म, जिसके जरिए नसीर साहब की कमर्शियल सिनेमा में बड़ी एंट्री हुई थी। राजीव राय की फिल्मों का म्यूजिक बहुत डिफरेंट होता था। विजू शाह उनके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, क्योंकि राजीव राय ने ही बाद में गुप्त बनाई थी और उसका म्यूजिक भी विजू शाह ने दिया था और शानदार था वो भी। चलिए फिलहाल ये गाने सुनते हैं, सुने आइए।

रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चराग जलते हैं, खुदा गवाह। वेलकम बैक, मेरा नाम तो समर है लेकिन ये डायलॉग जो बोला था वो बादशाह खान ने बोला था, नहीं बजाने बादशाह खान को। खुदा गवाह फिल्म का नाम जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, जिसका ओपनिंग सीन ही शानदार है, जब बुजकशी के लिए घोड़ों पर दौड़ते बादशाह खान यानी अमिताभ बच्चन और बेनजीर यानी श्रीदेवी की नजरें आपस में टकरा जाती हैं। ओए होए होए, क्या सीन था। 1992 की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी ये फिल्म और उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म थी। बताते हैं कि अफगानिस्तान में ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अफगानिस्तान में ही हुई थी और खास बात यह है कि उस समय के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पूरी यूनिट को एफओ सिक्योरिटी दे रखी थी। फिल्म ने पहले सप्ताह जमकर ओपनिंग ली लेकिन फिर कलेक्शन थोड़े डाउन हो गए, जबकि बताते हैं कि ये 1 करोड़ पर टेरिटरी के हिसाब से बिकी थी उस जमाने में, उस दौर के हिसाब से काफी महंगी रेट थी। इसी फिल्म पर बाद में पाकिस्तान में टीवी सीरियल भी बना। अमित जी ने इस फिल्म के बाद खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था, फिर वो 4-5 साल बाद फिल्मों में लौटे थे। श्रीदेवी फिल्म में बलाह की खूबसूरत दिखाई दी है और फिल्म के कॉस्ट्यूम भारी भरकम थे, इसलिए सेट पर 20 एयर कंडीशन एक साथ चलते थे। फिल्म मुकुल आनंद ने बनाई थी और अमित जी के साथ ये अग्निपथ और हम के बाद उनकी तीसरी और आखिरी फिल्म थी। दर्शकों को फिल्म से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी दिख रहे हैं, तो वैसा उनको मिला नहीं। हालांकि श्रीदेवी डबल रोल में थी और नागार्जुन उनके दूसरे हीरो थे और उसके अलावा शिल्पा शिरोडकर भी थी, डैनी भी थे। इतना होने के बाद भी फिल्म ज्यादा मतलब चली तो सही, कमाई तो बहुत की लेकिन लोगों को जोड़ नहीं पाई। तो हुआ ये कि इसके जो इतने बेहतरीन नगमे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ ही दब गया। तो हमने सोचा कि चलिए आज यादों का कारवा में इस फिल्म का जिक्र कर लिया तो इसके कुछ गाने भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए मेरे साथ इन गानों को और एंजॉय कीजिए और अपनी यादों को हमसे शेयर करते रहिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature veg and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
5: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro

किंग खान की पहली सोलो हिट फिल्म और बेहद खूबसूरत फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन। अजीज मिर्जा जैसा डायरेक्टर और बबली जूही चावला के अलावा रफ एंड टफ नाना पाटेकर थे इस फिल्म में। और ये गाना सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ बड़ा हिट हुआ था और आज भी पसंद किया जाता है। फिल्म का प्लॉट राज कपूर साहब की क्लासिक श्री 420 से मिलता जुलता है और ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उस दौर में हमारा देश इकोनॉमी के मामले में खुल रहा था, लिबरल हो रहा था और इस फिल्म ने एक बार फिर मिडिल क्लास, सोबर से रोमांस और सिंपल कहानियों के सिल्वर स्क्रीन पर लौटने की उम्मीद जगा दी थी। एक रोचक बात यह है कि फिल्म जापान में भी रिलीज हुई और वहां भी बहुत ज्यादा पसंद की गई। इसके अलावा कनाडा में इसे खूब पसंद किया गया। हमारे यहाँ तो हिट थी ही, ये फिल्म आज भी रिफ्रेशिंग लगती है और इस फिल्म के बाद शाहरुख और जूही ने कई फिल्में साथ साथ की। इस फिल्म के समय तक शाहरुख बड़े स्टार नहीं थे जबकि जूही बड़ी स्टार हो चुकी थी। खैर जी, दोनों की वेवलेंथ ऐसी मिली कि आज भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं। इनकी ये जोड़ी यूं ही बनी रहे और देखिए क्या खूबसूरत सफर रहा होगा इनकी यादों का। हाँ, आपकी यादें 1992 से कोई हैं? हमें बताइए। रेडियो मजी 24/7 लाइव पर हम बैठे ही आपकी यादों को सुनने के लिए। उस जमाने में क्या हुआ होगा, कैसे होता था, सब कुछ बताइएगा हमें और सुनते जाएगा यादों का कारवां विद समर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

और लीजिए देखिए चलते चलते हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं। कहाँ तक आ पहुँचे हैं, यहीं तो बैठे हो। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। लेकिन हाँ, अब जाने का वक्त होने लगा है, तो वादा रहा जन्म होंगे जुदा ना हम आए। चलिए इसी फिल्म की बात कर लेते हैं। फिल्म खिलाड़ी का ये गाना था, कमाल की तासीर थी इस गाने की। नहीं, ये गाना उस समय जितना ताजा लगता था आज भी उतना ही रिफ्रेशिंग लगता है। अभिजीत और अलका याग्निक ने इसे बहुत डूब कर गाया है। इस फिल्म से अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिल गया और अक्षय ने इसके बाद खिलाड़ी नाम से ही 7 फिल्में और की। फिल्म में सस्पेंस कमाल का था और 3 महीने तक फिल्म के सारे शो हाउसफुल चले थे। और हमारे तो वैसे भी अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा सस्पेंस हो, तो फिल्म को सुपरहिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। वो कौन थी जैसी 60s की कई फिल्में इसका सबूत भी है। इस फिल्म ने कईयों की किस्मत चमकाई थी, जैसे अक्षय कुमार की ये पहली बड़ी हिट थी। श्वेत वस्त्रधारी यानी हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाले फिल्म डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तान दोनों भाइयों की ये पहली बड़ी हिट फिल्म थी। म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित को इस फिल्म ने बुलंदी पर पहुंचा दिया था। हालांकि इतनी बड़ी हिट के बाद भी अब्बास मस्तान ने जतिन ललित को कभी रिपीट नहीं किया। और हाँ, यहाँ तक कि म्यूजिक कंपनी वीनस भी इसी फिल्म से चमकी थी। फिल्म नहीं देखी हो आपने तो देखी जा सकती है एक बार, और देखी हुई हो तो भी देखी जा सकती है, क्योंकि जॉनी लीवर की सबसे अच्छी फिल्मों से एक है ये। तो दोस्तों, ये था आज का यादों का कारवां। दरअसल हमारी हिंदी फिल्मों के साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है कि सुनते जाइए और बस सुनते जाइए। लेकिन समय की सीमा है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए शो के जरिए, कुछ नए गानों और उनसे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, और जाते जाते अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में
1: रहो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
0: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी, देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ है।

खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।

0: Let's go. You already know.
1: मेरी आशिकी

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो
2: give me love and give me more थोड़ा

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: राधिका श्याम रंग साधिका।
1: नमोस्तुते नमोस्तुते
0: शक्ति अहलादिनी प्रेम में उन्मादिनी नूपुर बनिवादिनी।
1: नमोस्तुते नमोस्तुते
0: श्रीयुत नारायणं कृष्णं पुरुषोत्तमं मदन मोहन माधवं।
1: नमोस्तुते नमोस्तुते
0: राधे प्राण वल्लभं राधे चित्तरंजनं राधे नाम से

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: यू नो वॉट, आजकल सोशल मीडिया पोस्ट इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती जितने उसके कॉमेंट सेक्शन होते हैं। आपने कभी ट्राई किया है? ट्राई करना, आप मीम्स को भूल जाओगे। सो हेलो हाय, मैं आरजे रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ जुड़ चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने किसी का पोस्ट देखा कि सिंगापुर में कितनी सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम एकदम नॉमिनल रेट पे या फिर जीरो कॉस्टिंग पे घूम लेते हैं, या फिर चांगी एयरपोर्ट हो या मरीना बे हो, मतलब बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए जो आप $0 में घूम सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ था कि अच्छा ठीक है, $0 में तुमने एंट्री तो ले ली, उसके बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी? MRT पकड़ के या पब्लिक व्हीकल या टैक्सी से तुम पहुंचोगी नहीं, तुम्हें खर्चा नहीं लगेगा, सिंगापुर कितना एक्सपेंसिव है, ये है वो है ऐसा है वैसा है। ओए होए, लोगों के जो मन के हाल है ना वो मैंने आज सिर्फ सुने नहीं है, पढ़े भी हैं, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से आप जरा कॉमेंट सेक्शन पर ध्यान देना। हाँ, मुझे याद कर लोगे यार, आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आ चुकी है। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: यू नो वॉट, बुरा वो नहीं होता है जो गलती करता है, बुरा तो वो होता है जो गलती करके मानता नहीं है। हाँ हाँ, अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में है। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड डेफिनेटली आपसे बातचीत जब यहाँ पे चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं उस कैटेगरी की इंसान हूँ जो गलती मान लेती है और इतनी प्यार से मानती है ना, आय हाय हाय हाय, वो कहते हैं ना, मतलब विमेन वीपन, वो जो होता है ना, बहुत प्यार से, हाँ मेरे से ये हो गया। ऐसे मानती हूँ कि सामने वाला गुस्सा भी ना कर पाए। तो आपको भी गलती तो मान लेनी चाहिए यार। हाँ, कहीं से इंस्पिरेशन ना मिल रही हो तो मैं आपको एक नाम बताती हूँ, फिल्म मेकर इम्तियाज अली, राइट। इन्होंने मतलब अपने 20 साल से भी ज्यादा के करियर में जो एक सबसे बड़ी गलती करी है, मैंने नहीं बताई, इन्होंने खुद बताई है। हाँ जी, इन्होंने लव आजकल मूवी का जो सेकेंड पार्ट बनाया है ना, वो इन्होंने गलत कर दिया। ऐसा मैंने नहीं, इन्होंने बोला है, बिकॉज इसमें कार्तिक आर्यन एंड सारा अली खान थे, लेकिन ये मूवी कमर्शियली एकदम पिट गई, पिट ही गई, और इस मूवी को किसी ने देखना पसंद नहीं किया। बहुत स्लो मूवी थी, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही थी, मजा नहीं आ रहा था। एंड डेफिनेटली लव आजकल मूवी का पहला सक्सेस देखकर इन्होंने सेकंड पार्ट बनाया था, तो इन्होंने खुद इसे यूजलेस एक्सपेरिमेंट बोल दिया है। मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स को बाय द टाइम ना ये चीजें कन्फेस कर लेनी चाहिए ताकि उन पर एक भरोसा बरकरार रहे, राइट। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? आजकल छोटा सा लूप होल भी ना एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बस उसे ढूंढने की तलाश है। एनीवेज, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है एंड आपको बताऊंगी कि इंडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। उसमें क्या है, आप मैंगो ट्रीज को लीज पे ले सकते हैं, राइट? मतलब फॉर अ सीजन आप उसका फार्मिंग, उसका कल्टीवेशन सब कुछ देखेंगे एंड वो जो ट्री है ना वो पूरा का पूरा आपका है लीज पर। कैन यू इमेजिन, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ओ माय गॉड। तो अगर आप इस डील को ग्रैब नहीं कर सकते तो पहुंचिए ggmartonline.com, जहां पे आपको देवगढ़ के, अलरत्नागिरी के अल्फांसो मैंगोज मिल रहे हैं 35 and 39 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स के अकॉर्डिंग। इवन आप घर की पूरी ग्रोसरी भी इस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। ggmartonline.com आपका अपना पर्सनल ग्रोसर पार्टनर एंड 70 सिंगापुर डॉलर अबव में आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: 50% off, 40% Joy Alukas.
1: 40% off? Oh my God! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus.

0: offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
1: Good morning! कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
3: सबसे अच्छा कौन लगता है? अपना बच्चा। अपने बच्चे की गलती तो कभी नजर नहीं आती, लेकिन यार हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं कि जब अपने बच्चे के अंदर खूबियां नजर आती है तो तारीफ नहीं करते? शायद यही उनका प्यार जताने का तरीका है। लेकिन इस मामले में आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बॉलीवुड एक्टर्स जो अपने बच्चों को खुलकर अप्रिशिएट करते हैं, खुलकर उनकी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये फील हो जाता है कि यार जब ये अपने बेटे की तारीफ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाँ, सो बताना चाहूंगी आर माधवन, जिनका बेटा एथलीट बनने की पूरी तैयारी कर रहा है, मतलब स्विमिंग से लेके कौन कौन सी चीजों में वो अलग अलग लेवल पे मेडल ला चुका है। तो इन्होंने बताया कि मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठ जाता है और रात को 8 बजे सो जाता है, 2 बार स्विमिंग सेशंस जाता है, कोई पार्टी नहीं करता, कंट्रोल्ड डाइट लेता है और बहुत ही वो कहते हैं ना नपे तुले तरीके से लाइफ जीता है। तो आर माधवन अपने बेटे पे जितना प्राउड करते हैं उतना ही ढिंढोरा पीटते हैं, और ये मुझे लग रहा है कि अपने पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए, राइट? आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं कुछ और भी तारीफें लेकर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।